0: और कार्यक्रम जो कि सूरीनाम के लिए कुछ कहने वाले हैं हम सब पर शांता जी तो माइक्रोफोन के सामने अब खड़े हैं और उन्हें कुछ कहना है। शांता जी क्या आप संदेश दे रहे हो, क्या है संदेश आपका?
1: शांता जी खड़े नहीं, शांता जी आराम से बैठी है
0: माइक्रोफोन के पास
2: संदेश के लिए एकदम उत्साहित है, तो बताइए शांता जी आप क्या कहना चाहते हैं?
1: अभी राजेंद्र के मुख से भी हम सुने श्री भगवान कृष्ण के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ, जीवन में क्या करना है तो रामायण से सीखिए, और जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत में से सीखिए, और जीवन कैसे जीना है ये श्रीमद् भगवद गीता से सीखिए।
0: अच्छा संदेश है, पर वैसे तो कार्यक्रम हमारा धार्मिक के ओर ज्यादा नहीं जाता है, नहीं, पर संदेश है कि उससे सीखने को। राजेंद्र जी आज हम सब के लिए अभी तो सूरीनाम का गाना जरूर आप सुनाने वाले हैं कि आज नहीं सुनाएंगे?
2: नहीं, सूरीनाम के गाने से पहले हम एक प्यारा भरा नगमा और सुनेंगे, राम रमैती रमैती।
0: चलो सुना देते हो, पर इच्छा वही हो रहा है उसी कारण मैं कह दिया कि अभी हम सबके हमारे सुनने वालों भी वही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं।

0: उनका नाम। मैं देख रहा हूं राजेंद्र जी भारत देश से संदेश भेजे है सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी ने ये संदेश भेजे है कि भाई दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है। यानी कि दुनिया में सबसे भाग्यवान कौन है राजेंद्र जी?
1: दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जो सुख में किसी के साथ, दुख में किसी के साथ रहता है।
0: नहीं, पर वो तो होगा वो तो होगा, पर सुरेंद्र चौधरी जी जो यहाँ संदेश को भेजे है कि दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है।
1: हाँ, ना जरूर।
0: अब कल रात्रि में हम सब क्या खाए?
1: खिचड़ी।
0: खिचड़ी बना करो स्पेशल वाला। पर अब ये हो जाता है कि जैसे संदेश भेजे उन्होंने कि जिसके पास भोजन के साथ भूख भी है और बिस्तर के साथ नींद भी है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि धन के साथ धर्म भी है। तो भाई सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अपना संदेश को हम सब के लिए यहाँ भेजे। हम सब भी और कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, पर शांता जी कुछ लिख रहा है, हमें कुछ कहना थोड़ो है। हम सब जो गीत हम सब के लिए खोज कर को रखे हैं उन्होंने, पायो जी मैंने, वो सुना दो।
2: सुना दो, बहुत अच्छा गीत
1: है पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो लता मंगेशकर।
0: क्योंकि इस गीत के बारे में आज फिर भी आपने वो यानी कि मीरा भाई जी ने इसी गीत को गाए थे ना?
1: जी जी जी जी

0: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: आप धन्य हैं।
0: तो बताइए शांता जी, आपने राम रतन धन कैसे पायो? सूरीनाम से जब आप यहाँ आए, पहले आप सूरीनाम में रहे होंगे ना?
1: मैं सूरीनाम में रही। हाँ।
0: तो आप कब वहाँ से आए? थोड़ा वहाँ का थोड़ा वृतांत बताइए शॉर्ट में। आपने राम रतन धन पायो जब आप नीदरलैंड आए, तो आपने राम रतन धन पायो कि
1: उसी राम रतन ने मेरी को यहाँ हॉलैंड में ले आया।
0: ओ तो बहुत अच्छा, बहुत मोई। संजय जी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे राम रतन धन की ओर।
2: राम रतन धन पायो, विश्वास और प्रेम। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है, दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। ये संदेश जो भाई शर्मा जी ने हम सब के लिए भेजे, तो भाई आपके संदेश को सुनाया गया, और जैसे कि राजेंद्र जी ने इस बात को पूछे कि हम कैसे राम रतन पाए, तो राजेंद्र जी कैसे बताऊं, पहले के परिस्थिति तो कुछ और था और अब के परिस्थिति कुछ और है,
0: तो वो सब राम रतन धन से ही हुआ है,
2: बगैर उसका नहीं हो पाता कुछ। इसी कारण हम सब यहाँ उपस्थित है, और आज सबसे बड़ा बात यह है कि हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के और ये कार्यक्रम को करते हैं कि दुनिया के हर एक कोना में लोग सुन सके, और कुछ ज्ञान के बातें इसमें रखा जाता है, कुछ संदेश इसमें रखा जाता है। यानी कि ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश से हमारे जीवन के ज्योति में जो चल रहा है उसमें कोई प्रकार से प्रकाश आ सके। हम देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे और रखे हुए विवान, और उन्होंने एक संदेश भेजे है कि उसे इस कार्यक्रम को अच्छा लग रहा है। राजेंद्र जी
0: क्या? तो विवान अभी बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए एक हमें लगता है कि एक हमें बच्चों
2: कुछ करना चाहिए।
0: हाँ, तो बच्चों के लिए एक गाना।
2: शांता जी आपको क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे लोग भी सुन रहे हैं ये प्रोग्राम।
2: हाँ जी, क्योंकि बच्चे ने व्हाट्सएप भेजे कि कार्यक्रम उसे अच्छा लग रहा है, तो चलो कुछ राजेंद्र जी क्या है हमारे बच्चों के लिए जो इस समय को कार्यक्रम को सुन रहे
0: बच्चे।

0: बताइए संजय जी, आप बच्चों के बारे में कुछ बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम बता रहे थे, अब बताइए।
1: वैसे तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये बच्चे मन के सच्चे सभी को तो यहाँ स्टूडियो में भी और गंवाने लगा, तो हम इस पे क्या और रख सकता हूँ। बस यही रखना चाहूँगा कि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। हम बच्चों के लिए ये सुंदर संदेश, ये सुंदर सा गीत को रखे, पर क्या हमारा घड़ी का रफ्तार भी लगातार चल रहा है, और आज हमारे सूरीनाम देश के जनता यानी कि सूरीनाम का गीत को रखेंगे आप कि नहीं?
0: हाँ, आज बहुत दिनों से हमने सूरीनाम के गीत का समय कम मिल रहा था, तो आज हमने समय निकाला, तो जरूर सूरीनाम देश का आपका जो बहुत ही प्यारा सूरीनाम हमारा प्यारा देश गीत है उसको जरूर रखेंगे और एकदम रेडी है। अब हम चाहेंगे कि सब लोग इसको बड़ी अच्छे से सुनें और इसका आनंद उठाएं।

0: भाई राजेंद्र जी आपने गाना भी गाना शुरू कर दिया तो भाई हाँ बोले है लखस्ताद से भाई गहार जी भी फोन करके बोले कम से कम हमार बारे में तनी से बोल दिए कि हमार शहर से यानी कि आम्स्टरडम से वो और कहते हैं कि ये बहुत और अच्छा लग रहा है उसके ये कार्यक्रम में। दोस्तों हम सूरीनाम के बारे में सूरीनाम का गीत को सुने तो पुराना ख्याल तो आ ही जाता है, पुराना ख्याल आ ही जाता तो शांता जी भी यहाँ पर बैठे हुए। शांता जी शायद आपको ख्याल आता होगा कि पहले और जाकर के वर्षा के टाइम पे खेती में कैसे काम होता रहा, सब तो बुड़ जाता था कहीं काल के पर कहीं कहीं तो नहीं बुड़ते थे, तो आपको कुछ उसके बारे में अब ख्याल है कि भुलाए गए लो सब?
1: ना सभी ताजा ताजा याद है,
0: अब भी ताजा ताजा याद है।
1: जब हम यहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं ना स्नेल वेक पे तो हम ताकि यहाँ कैसे खेती बाड़ी हो, तब ये सोचते हैं कि सूरीनाम में हमारे साथ कि पानी बरसे तो वहाँ चांटा हो जाए।
0: हाँ, सब बुड़ जाते थे ना,
1: सब बुड़ जा, जितना खेती बाड़ी रहे सब खाना सब डूब जा।
2: ये तो बड़ा अच्छा है शांता जी की आपको सारी चीज याद है और आपने खेत में भी काम किया है।
1: हाँ,
2: तो बहुत अच्छा है आपका।
1: बाकी हम लोग खाते तो मामा बाप पोल्डर बना दे रहा, ओमेगो बोट ढर दे रहा,
0: तो हम वो लोग तो मस्ती भी आप लोगों खूब करते हैं। हाँ,
1: बोट से हम लोग जाए खेल के जाए पाछे सौदा काटे तो सौदा बोट पे ढाए तो फिर आवे घर है, तो घर है सब तैयारी होवे। तो पहले के जमाने में रहा कि एगो ट्रक रहता रहा जौन सब संझा के आवे सब सौदा उठाए के ले जाए तो बाजार ले जाए।
0: ओके हाँ ओके, कहते थे क्या बोले कोपमान यानी कि जो सब्जी इकट्ठा किन के और ले जा करके इकट्ठा करके और ले जाते थे, तो पहले के वृतांत में ऐसे ऐसे बातें होते थे।
2: तो अभी वो वृतांत नहीं है क्या? अभी वो
0: नहीं वो होता होगा पर हम लोग राम जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए।
2: तो
0: अब यहाँ
2: हम चाहेंगे एक बार इस प्रकार का वृतांत जो आप बता रहे हैं सूरीनाम देश जाके देखना चाहते हैं।
0: ये तो हम सब बात कर चुके हैं, बस हम लोग के जहाँ मौका मिले तो हम सब यहाँ से सूरीनाम से फिर उसके बाद में निकेरी जरूर पहुँचेंगे। हम देख रहे हैं टेलीफोन दोनों के दोनों साथ साथ में बज रहा है पर हम लोग कार्यक्रम को समाप्ति की ओर पहुँच चुके हैं धीरे धीरे, तो हम लोग तार भी नहीं उठा पा रहे।
2: कोई नहीं, हम उसके लिए एक गीत का लागी छोटी ना सनम गीत
0: चला दो,
2: तक

0: गाना को चला रहे पर और हमारे टेलीफोन पे कोई ना कोई हम लोग सबके नाम नहीं ले सकता है। मुफर्रम रामदीन जी जो बड़ा खुशी है और खुशी से ये कहते कि भाई मुझे ये ख्याल आ गया कि बुद्धू पासी यानी कि वेलखदा बे के रहने वाले हैं और वो भी और इसी प्रकार से और जाकर के खेती आदि करते थे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहे कि जो राम रमनी यानी कि श्री राम जी का गीत को चलाया गया तो उन्हें रामलीला का याद आ गया। दोस्तों ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं और आशा यही है कि आपको अच्छा लगे होंगे हमारे कार्यक्रम में जो गीतों के सब खोज कर रखे हैं। तो शांता जी है हमारे कार्यक्रम के विषय को रखने वाले हैं और जो सुविचार के रखने वाले बबली जी है और राजेंद्र जी जो पनील के पीछे बैठे हुए हैं, मैं हूं आपका सेवक संजय और आशा यही है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे होंगे और आप इंतजार करते रहना।
1: प्यारे पावन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश सुनने के लिए। आशा उम्मीद है कि हम जैसे अपना प्रोग्राम बनाए सजाए आपको पसंद आया हुआ होगा। आप सब आपके सेविका और सेवक संजय, राजेंद्र और शांता, धन्यवाद सुनने के लिए। आप अपना ख्याल रखना।
2: फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों को सबको मेरा प्रेम और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल, धन्यवाद, शुभ रात्रि।

0: भाई यूसुफ जी, कभी लेफ्ट कभी राइट आप चल रहे हैं, ऐसा क्यों आप इस बार ऐसा करते हो?
1: इंसान कैसे चले क्या पड़ेगा, सोझा ना चल पाइए।
0: सोझा ना चल पाओगे?
1: जी ना,
0: बिल्कुल ना।
1: कभी लेंग्स कभी रेक्स,
0: कभी लेफ्ट कभी राइट,
1: वही गाना में सुना दे से, चल बेटा लेफ्ट चल बेटा राइट।
0: सुनने वालों, ये गीत पे थोड़ा से ध्यान देना, क्योंकि ये हमारे यूसुफ जी का ओपनिंग नंबर होते हैं। और जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है ना।

0: ढाल, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो कभी लेफ्ट तो कभी राइट होता है, यही जीवन का और संदेश है। हमारे साथ हमारे भाई यूसुफ जी, जो इसके बारे में और कुछ सुनाने वाले हैं जरूर। यूसुफ भाई जी, ये फिल्म का नाम दो दिल का दास्तान, दिलों का दास्तान है ना?
1: ओ, दो दिलों का दास्तान।
0: तो ये पुराना फिल्म और अनहेल ऑफ फिल्म जिसमें बड़ा संदेश है। भाई यूसुफ जी, पहले के समय पे जैसे कि आप बात कर रहे थे कि बायोस्कोप जो होते थे सूरीनाम में ना?
1: जी हाँ।
0: मेरे ख्याल से बहन यार 60 की 50 से और वहाँ बायोस्कोप होने लगे थे।
1: जी हाँ।
0: और वहाँ पर भले ये बताओ कि कौन पहला फिल्म साइट वहाँ चलाया गया?
1: पहला फिल्म जो चला था सूरीनाम में?
0: जी, यानी खास करके हिंदुस्तानी फिल्म।
1: हिंदुस्तानी फिल्म वो रहा ना द पारल के ओपनिंग फिल्म रहा, जो फिल्म मदर इंडिया।
0: द पारल के ओपनिंग फिल्म होते थे
1: मदर इंडिया।
0: और ये इन द यार अंबेच बखेन यार फाइव तक के। द पारल जो कहाँ पर रहता था?
1: वानिकास्त्रात
0: ऑफ द भोग, वहाँ जहाँ वाटर लाइडिंग के तोरण और उस तरफ थे। पर हमारे साथ शांता जी बैठे हुए, और बाद में बायोस्कोप के सिवा एक ओपलुक थिएटर बन गया था जहाँ पर शांता जी भी शायद और वहाँ उसके बारे में और बता सकते हैं। शांता जी, क्या वो मेरे ख्याल से अब नहीं है ना?
1: अब ना है वो।
0: जो ओपलुक बायोस्कोप बनाया गया था,
2: डायरेक्टर
1: कर रहा मथुरा, मथुरा वाज द डायरेक्टर, कर रहा वो फ्लैम्बोयंट।
2: अच्छा,
0: तो वो कौन साल में बनाया गया आपको पता है? मेरे ख्याल से इन द यार 70 तक।
1: ना उसे आगे रहा,
0: उससे पहले 68 नहीं ना? इतना पुराना जो
1: तो लेके चल जाओ भीतर, बड़का पर्दा है,
0: बड़का पर्दा पे
1: ताको नहीं मत ततवार खसाल खो एन मोयते तो मत। और अफलाइडन ढेर ना रहा है हम लोग के हिंदुस्तानी के,
0: अफलाइडन ढेर ना,
1: हफ्ता भर काम करो, वीकेंड चल जाओ फिल्म कोनो, चल जाए कोला क्रेक बॉस फीफा कर रहा निकेरी कोनो, चल जाए कोनो कमवेना कोनो सरमक्का।
0: देखो जो हम लोग तनी से और बड़ा होने लगे तो हम लोग का हर हफ्ता कभी फुटबॉल हिया तो फुटबॉल वहाँ, वो उसमें हम लगे रहते थे। हाँ,
1: फुटबॉल में भी ज़्यादा हम लोग हिंदुस्तानी लोग ढेर भी करी से ना।
0: और ये जो बायोस्कोप है भाई यूसुफ जी, इसमें आपको ज़्यादा जानकारी, क्योंकि वीडियो जो बाद में जो घर घर पे वीडियो किनाने लगा तो वो बखेन यार ताख्तक के बात है ना?
1: हमें जहाँ लग पता है सूरीनाम में
0: बखेन यार ताख्तक एंड यार शरीफन तक बखेन यार ताख्तक,
1: तब तब तब पहले इंडस्ट्री जान ले जो तियातर रहा उस सब तने कमती हो लगल आदमी लोग, अब घरे घर फिल्म अपन ताके तना जाए तियातर में देखे,
0: तो तियातर नहीं जाते थे देखने को। कि कुछ आपके ओर से जब रखना है बायोस्कोप के बारे में जो सूरीनाम में हुए है और उसके बारे में जानकारी है, तो जरूर आप हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। स्टूडियो का और टेलीफोन नंबर जो यूसुफ जी आपको सुनाने वाले हैं,
1: टेलीफोन नंबर है 07-365-22-47। वो इस वो नंबर जो इस साइट हैगा
0: इस समय जो हमारे पुराना नंबर है ना यूसुफ जी, जो फिर से दोबारा चालू हो गए हैं।
1: या एंड द अंदर नंबर द आउट नंबर इज ऑल इन वर्किंग दैट इज 07-36-22-077। और एक वन नंबर जो है वो आंखसलोते है, हैगा आए गए हम लोग के मिल गए हैं, अब आंखसलोते नहीं है, दस काबल आज भी हां लिख दोनों पुराना नंबर हो जाएगा हम लोग के।
0: तो ये भी एक बढ़िया बात है, नया स्टूडियो, ना जो पुराना नंबर होते थे फिर हम उनका फिर दोबारा और चालू हो जाएगा। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और अभी और भी संदेश हमारे भाई यूसुफ जी हम सबको सुनाने वाले हैं।

0: सुनने वालों, जो बड़ा कलाकार है, जो जिन्होंने और बड़े बड़े फिल्मों में भी काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, इनकी एक फिल्म आ रही है सुरक्षी सेना के लुटेरे, उसमें भी इन्होंने गाना गाया है, और मिर्ची अवार्ड में भी गाना गाया है, और एक इंडियन आइडल प्रोग्राम आता है उसमें भी इन्होंने गाने गाए हैं।
0: भाई जो हमारे यूसुफ जी है, और भी फिल्म के बारे में और भी कुछ संदेश रखने वाले यूसुफ जी, तो ये बताइए कि परमारिबो एक छोटा सा शहर ना?
2: Ja, hoofdstad Rap.
0: Hoofdstad.
2: Van Suriname met ongeveer 80 tot 90.000 mensen.
0: 80 tot 90.000 mensen. Of bioscoop raal hoe je dat wil ik?
2: Er is bara bioscoop raal. Sap full house raal.
0: Sap full house.
2: Zoek sanitaire toar.
0: Ik bioscoop bij Rust en Vredestraat meer uit dit heen.
2: Waar een familie haar kiezen keer raal, waar een empire.
0: Empire.
2: Yeah.
0: और एक बियोस्कोप हमें ख्याल है, मैं अभी स्कूल जाते थे तो यहाँ दोमनी स्त्रात जहाँ पर एक लकड़ी का
2: बेलफ्यू,
0: वो बेलफ्यू रहा।
2: जी हाँ, वो बेलफ्यू, वो रहा एमिला फेंटा के, वो के चार को तैयार रहा।
0: और एक जो आपने क्लाइन सर मक्का स्त्रात में,
2: वो रहा फैमिली मानी चंद के जसोदरा।
0: जसोदरा,
2: जसोदरा।
0: ऐसे ऐसे भी यहाँ भी शांता जी, आपको कुछ ख्याल आता होगा कौन सा बियोस्कोप में आप गए वहाँ पहले के समय पे?
3: कंडाल में रहा।
0: कंडाल में भी?
3: कंडाल में थिएटर शांति,
2: शांति वाज फन। ओ या
3: कंडाल में,
2: हाँ शांति रहेगा वो तो।
3: 10 नंबर की सरद 10 पे रहा थिएटर शांति, तो उस थिएटर में हम गए। सबसे पहला फिल्म अपन जीवन में स्टार्ट की है हाथी मेरा साथी से।
0: हाथी मेरा साथी से
3: पहला फिल्म जो हमने देखी बियोस्कोप में, थिएटर बियोस्कोप में। हाँ, हाथी मेरा साथी,
2: रजेश खन्ना।
3: हाँ, एक हिट फिल्म
2: था। सब बैनर फिल्म हिट रहा था
3: रजेश खन्ना के, लगातार उस सुपरस्टार रहा ना, सबसे पहला सुपरस्टार वही था फिल्म इंडस्ट्री में। और क्योंकि उसका 14 या 15 फिल्म लगातार जो हिट हुआ है, 15 फिल्म लगातार अख्तर अलकार लगातार जो बने गए हिट होते आया, और पहला और आखिरी ओकर बराबर आज तक कोई ना, सुपर सुपर स्टार है।
1: हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ शांता जी। उससे पहले राजेंद्र कुमार जी जुबली कुमार कहलाए, उनकी फिल्में जुबली होती थी, सिल्वर जुबली।
3: 15 फिल्म अख्तर अलकार हिट हुआ जो है, तो वो सिर्फ राजेश खन्ना के है। हाँ, जैसे कि
2: कॉर्टेट।
3: हाँ, और जैसे कि कुमार शानू, उसको भी उसको भी अवार्ड्स मिला है लगातार, 5 अख्तर अलकार, 5 अवार्ड्स मिला अख्तर अलकार, तो वो भी कुछ महत्व होना चाहिए ना। हाँ, राजेंद्र जी जुबली हिट हुआ है, वो तो कुछ अलग से हमार हिट हुआ है लगातार फिल्म बनाने। 15 फिल्म राजेश खन्ना के अख्तर अलकार हिट हुआ, सोचो तो
2: ना। वो सही बात है। देख, एक फिल्म जो यहाँ पर रहा, दोली से फिल्म रहा, दो रास्ते राजेश खन्ना के, वो फिल्म एक को बुन रेक्लामा ना भैल, तब वो 3 हफ्ता लगातार वो फिल्म चलल।
3: हम सुरनामा के भारत पहुँच गए।
4: मेहरबानों

0: दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, ये बात नहीं है कि हर रोज सुबह जाकर खुयो मोर का कहना है, पर यह सुबह जागते हो तो अपने का तैयारियां करना है, घर बार कर काम, घर बार साफ सुथरा करना है, अपने आप को ख्याल कर रखना है, बच्चों को ख्याल करना, ये सब काम है रे मेरे भाई। अपना नखून साफ करना ये सब काम है, अपना दाढ़ी साफ करना, मुस्ताश अपना बनाना, मुस्ताश यानी कि मोच, पहले लोगों ने ऐसे मोच रखाते थे इसे कालम के ढकनागत चल, हाँ चलते थे और ऐसे ड्राई करते थे अपना मोच। आज के ज़माने में मोच का ये मोदे जो ना है बल्कि बकम बाट के और बाट के मूद है, ये सब समय से चलता है, हो सकता है कि आगे में चल के ये सब कालम का ढकना रखाएगा, इसे हमारे आने वाले पीढ़ी जो है नौजवान लोग। हाँ तो दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारो,
1: ये तो सही बात है।
0: हाँ बगैर काम करे हम आज जो सांस लेते वो भी एक काम है, हालांकि वो ऑटोमेटिक चलता है, वो भी एक काम है। बगैर काम करे हम एक क्षण नहीं रह सकते, है ना बबली जी?
2: बिना काम के तो एक क्षण नहीं रह सकते, लेकिन आपने अभी बोला कि जो सांस चलता है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन जिस दिन सांस बिगड़ जाए उस दिन आप हाल देखो, 5 मिनट नहीं लोग रहते।
3: इस पे यूसुफ भाई आपके क्या राय है, जब सांस बिगड़ जाए तो बबली कहते 5 मिनट 5 साल की तरह लगने लगता ना?
1: ये तो सही है कि जहाँ रुक गया तो गया,
3: रुक गया
1: तो
3: गया।
2: सांस रुकने से पहले अगर सांस उखड़ जाए हमारी क्या हालत हो जाएगी वो भगवान ही जाने।
0: तब उस समय पे पता चलता हैगा कि एक जीवन का कीमत कितना कितना अनमोल है, एक सांस के जरिए से हमारा ये शरीर है जो चल रहा है, अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए, सांस के संतुलन जो बिगड़ जाए तो समझ में आता है कि देखो ये जीवन कितना कीमती है। और तो मासिस जो सब कुछ हो रहा है तो सोचते हैं कि अच्छा

0: ये सुंदर सा गीत जो महेंद्र कपूर के आवाज़ में हम सब सुने। भाई यूसुफ जी, पहले हमने और जब जा कर के एसटीएफएस पे रिक्लामा आवे तो ये भी सुनने को मिलता था कि ये एक फिल्म इंडिया ओवरसीज और कुछ और कहा जाता था, उसके बारे में आपके कुछ संदेश या उसके बारे में आप कुछ जानकारी है?
1: या वेल द पारल के वर्तेघोर्दक रहा वो इंडिया ओवरसीज और जसोदरा के रहा द लुक्स फिल्म जो नावत रहा।
0: तो इंडिया ओवरसीज और द लुक्स, व्हाट इज द एसेंस? दिट वार बद्रैव या फिल्म?
1: ट्वे मस्खपेय वार दैट
0: दी फिल्म्स बिनब्रखत ओम ओम अटलांट उदेश में चल सके
1: है। और द पारल लेवत रहा इंडिया ओवरसीज से उसे रहा कॉन्ट्रैक्ट और जसोदरा वाला रहा द लुक्स।
0: और यहाँ भी कहा जाता है कि हिंदुस्तानी के और भी बियोस्कोप थे, तो जैसे कि मेयर सौरख में

0: meer zorg meer aan van de heer Baldeel. Huh? Maar ook het theater kan naam blijven jullie, hè?
1: Domburg ke wasie logan, maar waha bioscoop theater Domburg, er jaha paranam bhi hote the, aur aise aise bioscoop apne shaharon ko naam bhi rakha jata tha na.
0: Ha paranam mera Domburg mera ha.
1: Kwarasang mein mere khayal se Kwarasang.
0: Kwarasang leiding kanti raha bhim.
1: Sar Makkah mein bhi raha.
0: Hamme jahan lag pata Sar Makkah mein raha, ek wo Makkah par hum na ukar pa bhim, hum log ढेर शहर से ना तालुक करते थे द पारल और जसोद्रा.
1: द पारल और जसोद्रा यही, और कोनिंग स्ट्रीट में भी एक बियोस्कोप होता था.
0: हाँ, सुन ली लातेर गोयल हमने नहीं, लिबर्टी की कौन सी नाम रहा पता ना है. इगोरा लिंकोलन,
1: लिंकोलन
0: इगोरा डायमंड लिबर्टी,
1: लिबर्टी लिबर्टी
0: इगोरा डायमंड हुआ लिफोर्नो बतेस्टा फ्रॉम फैमिली सोलेमन.
1: ओके डायमंड, हाँ हाँ, जैसे हमें हमें ये बात, मुझे ख्याल है कि मेरा बचपन में फिल्म जाने का बहुत इच्छा था, तो उस समय पे मेरे ख्याल से चोन्नी में रहा टिकट, पर चोन्नी वाला टिकट पे एकदम आगे बैठना पड़ता था, तो वो लकड़ी के बांगी होते थे जैसे कि नौता में होते थे.
0: ओके,
1: नौता में होते थे ना, लंबा लंबा
0: पिंदा बांगी बोले तेरा सर. हम लोग तो हम लोग आते तो मारे पार्टेर में,
1: पार्टेर में
0: ऊपर. तो
1: उस समय के टिकट कितना होते थे भुला गए होंगे आप, पर हमें ये ख्याल है कि हाँ कुछ चुन्नी या अठन्नी होते थे तो एकदम आगे बैठना पड़ता था, और पूरा फिल्म बैठ करके, और जैसे अब आराम से बैठा जाता है यहाँ जाओ बियोस्कोप में, वो नहीं होते थे
0: ना. हुआ रुस्तक से अपन फिल्म खतें आदमी लोग जाता रहा, एक्टर है और राज कपूर और दिलीप कुमार, शामी कपूर, देवानंद, प्रेमनाथ, तो और मोई मोई गाना भी मेरा आदमी लोग खनित करे रहा टू एंड हाफ तीन घंटा में, साढ़े तीन घंटा फिल्म संगम देख साढ़े तीन घंटा रहा,
1: साढ़े तीन घंटा का फिल्म. अब देखा जाए कि भारत में भी अगर जब जावल जा है तो कभी वहाँ भी उसको बड़े बड़े मॉल बन गए ना बबली जी, तो मॉल में भी बड़े बड़े मॉल जो बन गए हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बड़ा सुंदर रूप से और रखा गया, पर वही भारत में वही दिल्ली में कहीं जो जाकर के लोकल जो बियोस्कोप है उसमें जब आप जाकर और बैठो तो मज़ा कुछ और होता है, ऐसा है बबली जी कि नहीं?
2: हाँ जी, वो तो है, फ़र्क तो दोनों में है. और भारत में भी पहले सबसे आगे वाली कुर्सी पे बैठने 5 रुपये टिकट होती थी, और उससे थोड़ा पीछे 15 रुपये, अगर बालकोनी में बैठना है तो 25 रुपये.
1: ये रुपए की बात हो रहा है. हाँ, और पहला का बात हो रहा है. और जब देखा जाए कि बियोस्कोप जो इंडिया ओवरसीज और द लिक्स पर, इसमें सिर्फ एक ही दो बियोस्कोप होते थे जो उससे फिल्म लेते थे कि
0: खाली दुई गो रहा मासा पे, हमें जहाँ लग पता है दुई गो, और द पारल वास खलिंग में क्या बोले सावित्री हुआ पर ना पराख के जोन रहा पथफावनिका,
1: पथफावनिका में.
0: हाँ, और फैमिली बालदेव ये सब साथ काम करता रहा, और जसोद्रा वाला रहा उसे ताजमहल लोग ये सब साथ करते रहा काम.
1: और मेरे ख्याल से भी निकेरी में भी कुछ बियोस्कोप होते थे, और
0: के हुआ के वो रहा फरते खबर दखर द पारल के ऑफ जसोद्रा के, वो पता ना है,
1: वो ना पता है
0: जी ना.
1: शांता जी, इसमें आप कुछ और, क्योंकि आपने पहला फिल्म जा करके देखे थे हाथी मेरे साथी,
3: हाँ थिएटर शांति में,
1: तो
3: और जैसे योसेफ जी बता रहे हैं ना, तो फिल्म वो सब जहाँ से लाते थे ना भारत से आता था, तब वहाँ पे फ्लैम्बोयान वीडियोटेक जहाँ था हॉफस्ट्रात में, तो वहाँ पे सब लाकर धरते थे, और जेके जेके जहाँ जहाँ पर लेना था ड्राई करना था फिल्म, तो वहाँ पे सब आकर फिर से ले जाते थे बड़ा बड़ा डिब्बा में ऐसे पानी धर ले, और हाँ रोल में ऐसे धर देवे, जैसे आजकल में कैर्स के तहत में शुक्ल अधवन आयो मैंतुअन में इसे एरोवन दो इसे, और इसने इसने बड़का बड़का एन बहना दोष नेफा में ही तरह
0: या बड़का बड़का
3: हाँ अरलोन तो मैं ऐसे रोल वन आए फिल्म दराय हुए जो ऐसे खट खट खट दराय या सो है एक क्या पता सो में ही खमाक एंडी मैं सो कुआं मोक दार हन फिल्म हाल ओम नान फरफोल्खंस इन हन बियोस्कोप आफ्टर दरायन फॉर द लिफ हैबर्स तुंदर टाइट क्या धमाका था वो समय
0: वो एक वो लाइट टाइट रहा है वो
1: जरूर
0: आज टाइट रहा है जहाँ देवल धर देवे ना मिडनाइट तब देख रे में खड़ा हो अगोरो
3: हाँ
0: जाओ भीतर
3: अब मुझे लगे वहाँ पाउस इंटरफाल जो हो तो पाउस हो तो चिराग जब भर जा फिर से सब कोई बोले आपका है तो सब कोई जाए बहरे कोई कोला कीने अब पहले शौचस था शौचस और कोला ये दो ही चीज बहुत मशहूर था
1: बियोस्कोप का एक स्पेशल बोतल बनाया जाता था ना
3: हाँ
1: बियोस्कोप का कोला का एक स्पेशल बोतल होता था
4: भारत में भी ऐसे
0: कोका कोला
4: कोका कोला छोटी बोतल होती थी कोका कोला की अब भारत में 400 चलते थे सूरीनाम में कितने चलते थे शांता जी भारत में थे सुबह 12 से 3 3 से 6 6 से 9 और रात वाला 9 से 12 अभी तक ऐसे हैं
3: अच्छा
0: अच्छा नाम सूरीनाम में रहा 8 बजे से 12 बजे
3: हाँ
0: तो 12 फिर और मिडनाइट रहा फिर 9 से तो द्री और फिर और अतवार के रात डबल एम्पायर कर रहा था हाँ मती नहीं दुई दुई को देवत रहा अपन
3: मती नहीं बोला था मती नहीं जो सबेरे ओफर दाख जो अंदराय होता है सबे सुबह के वक्त अरे दिन में जो अंदराय हो के बोले मती नहीं
1: माती नहीं कहा जाता शांता जी शायद आपको ख्याल होगा कि एसटीवीएस पे भी नाद न्यूज में बुझा है एक प्रोग्राम आता था रोनी रेंस का जिसमें वो फिल्मों के बारे में जो कौन बियोस्कोप में कौन फिल्म आने वाले हैं उसके बारे में अखेंदा
3: हो सकता है मुझे पता नहीं
1: पर रखा जाता था
3: अच्छा
1: इसमें भी कितने हमारे सुनने वाले हो शायद जिन्हें थोड़ा से ख्याल आता होंगे या आती होंगे
3: तो तुरंत आप तार उठाकर आप तार लगा दो तार का नंबर कितना संजय जी
1: तार का नंबर आप मुझसे पूछ रहे हैं पर तार का मालिक होते हैं यूसुफ भाई और मालिक से हम थोड़ा बचा के रहना पड़ता है ना
0: अच्छा तार का नंबर है 070-362-2077 ये तार पुराना जो आप खुल गया है और we zijn bezig met die andere telefoon, dat is 070-365-2247.
3: Ik bar vier ze herhaal karte, to jo aas pe taar kar sakte.
0: Haan, jo 070-362-2077.
3: Haan, mere sunne walo, aap jhijikna mat, darna mat, aap jo jarur se taar lagao, aur hamare saath bhi apna, wo purana khayalat jo hai, jo hum sab us dino mein guzare hai, आप यहाँ हमारे साथ भी बांट सकते हो

0: सर।
1: यूसुफ भाई वहां पर और क्या कहते
2: सिपोस जो रहा
1: सिपोस
2: पुराना वाला रहा फैमिली बेचान लोग रहा दो तीन भाई लातर आयल है भाई शिव
1: और कौन सा भी उसको तो उसमें ये होता था सिपोस के जब अगर आप कोई जान पहचान वाला हो तो बस चुप्पे से अंदर चल जाते थे कि नहीं
2: तनी
1: गोलमाल होता था कभी काल के
2: वहाँ पर रहा मुफरोका राजीव सिंह क्लॉक से सब तक तक तक तक सब गिनत रहा ना क्लॉक हुई तब सिपोस के बुलावे आओ यहाँ और दिमोफरो वॉज हिल स्ट्रेंथ।

जी हाँ, सुन लो वालो, यहीं से यह प्रोग्राम ख़त्म है और सब कोई के मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज और नमस्कार।

0: पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। सुनने वालों, ये है कार्यक्रम फनकारों की दुनिया, जो यहाँ से हम सब प्रस्तुत करने वाले हैं। सुनने वालों, हमारे साथ ही जो इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी, जो इस समय स्टूडियो में उपस्थित है। तो पहले शांता जी अपना एंट्री लेते हैं, फिर बबली जी, फिर कार्यक्रम को हम सब बढ़ाते हैं।
1: हेलो, सुन सुन सुन मेरे जान, जिनका मन का भाव सच्चा होता है, जिनके मन का भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। आपको स्वागत है फनकारों की दुनिया में।
2: यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं।
0: सुनने वालों, आज का कार्यक्रम में जो हम सब रखने वाले हैं कि हमारे कलाकारों का, और जो अपना हम सबको कला से अपना प्रदर्शन दिए, अपना कला से ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर रेडियो आज हम सब बना रहे हैं और गीत को छोड़ कर गए हैं। तो शांता जी, इसके बारे में जो आज हमारे पास नहीं है, जो फनकार हमारे साथ नहीं है, जो इन द यार सस्तख इन द यार फाइव तक के समय पे, तो मदन मोहन एक ऐसा कलाकार जो बहुत सा गीत हम सब का लिए और गाए, गा करके भी अपने और अंदाज में औरों को भी गवाए हैं।
1: यानी कि आज का प्रोग्राम चलेगा मदन मोहन के बारे
0: जी,
1: में।
0: जी, मदन मोहन जो एक सिंगर, एक राइटर, एक जो कंपोजर,
1: प्रोड्यूसर
0: और उन्होंने एक परिवार से जुड़े हुए, और जिनका जन्म इराक में हुआ था ना?
1: जी हाँ, इसे तो हमने पढ़ी है, सुनी है। जी हाँ, इराक में हुआ था उनका जन्म।
0: उनका जन्म इराक में हुआ। और
2: मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में मदन मोहन जी का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल इराकी पुलिस में काम करते थे।
0: मदन मोहन का जन्म जब जा करके, और 25 जून नेखतीन कितना नेखती फीरन तक ना?
2: हाँ जी,
0: नेखतीन फीरन तक में हुआ। सुनने वालों, और जो जा करके और इराक में हुआ था, और अभी नेखती फीरन तक में तो इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि आज़ादी नहीं हुआ था।
2: जब मदन मोहन जी का जन्म हुआ तब ना भारत आज़ाद हुआ था अभी, और ना इराक आज़ाद हुआ था।
0: और उसके बाद में जो जा करके आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद में उन्होंने और जा करके भारत में आए कि उससे पहले?
2: ना, आज़ादी के बाद जब इराक आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तब उनके पिता भारत आए।
0: और भारत में गए भी तो एक म्यूजिक स्टूडियो में, यानी कि एक हकदार बन गया म्यूजिक स्टूडियो का ना?
2: हाँ, म्यूजिक स्टूडियो चलाते थे उनके पिता मदन मोहन जी के।
0: उनके पिता मदन मोहन जी का पिता एक म्यूजिक स्टूडियो चलाए करते थे। पर शांता जी, उस समय कहा जाता है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर का मतलब क्या है?
1: हाँ, वही तो। फिल्म के प्रोड्यूसर, तो उसके बारे में मैं डच भाषा में कहना चाहती हूँ, चलेगा?
0: एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल हाँ, चलेगा।
1: कारण कि हम सुनते हैं हिंदी में कि प्रोड्यूसर अंग्रेज़ी में भी है, पर उसका महत्व हम नहीं जानते हैं, एक अलग में
0: उसका खासियत नहीं जानते।
1: जी, तो हम डच भाषा में कहेंगे कि म्यूजिक प्रोड्यूसेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एस ए म्यूजिक प्रोड्यूसेंट दिक्वस प्रोड्यूसर खनोम ईमान दी द फरांतोर दलखाइत है फन म्यूजिक। और हम देखें आगे में तब है कि प्रोड्यूसर आज प्रोड्यूसर ओक वेल प्रोडक्सी लेदर खनोम,
0: तो उसका लेदर यानी कि, पर ये बात हो जाता है यानी कि खर्चा जो होता है ना,
1: सभी बागदौर उसके हाथ में
0: हो जाता है।
1: जैसे कि हाँ, जैसे हमने कहा कि ओक वेल प्रोडक्सी लेदर खनोम बे यो हो साक लग बेसक मेथड और खानी सेरन फन ऑडियो विजुअल प्रोडक्सी Die persoon zorgt voor de benodigde faciliteiten, materialen en mensen. Die persoon is dan ook daarbij zowel organisator als budget- en tijdbewaker.
0: Tijdbewaker. Dus is allemaal je itne, ha, itne sare
1: zimmedariën
0: ho jata hai, ek producer.
1: Jee. और हम देखें और आगे में तो हैगा द रोल फॉर अ प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूसेंटन सेन द मेंशन दी द क्वालिटी फॉर द फिल्म होग हाउडन बहुत बड़ा जिम्मेदारी एंड एरफोर सोर्गन दैट द प्रोडक्शन ऑफ टाइट एंड बिनन द बिनन हेड बजट फॉरलोप
0: यानी कि उस पे भी ध्यान देना पड़ता है कि बजट के अंदर अंदर जो हो सके क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए शांता जी बहुत खर्चा होता है ना
1: हाँ इसलिए
0: और एक म्यूजिक गीत उसमें डालने के लिए भी खर्चा होता होंगे
1: इसलिए सब एक टाइम में या कैसे यहाँ कहते हैं डेथ लाइन हाँ उसके उसके उससे पहले ये सब हो जाना चाहिए नहीं तो खर्चा और बढ़ जाएगा
0: तो दोस्तों आज का जो विषय है जो आज हम सब रखने वाले हैं कि मदन मोहन जी जो एक ऐसा कलाकार जो हम सब के लिए इतने ढेर सारे और गीत जो बना करके रख चुके रखे कितने तादाद में और उसके जो उनका जन्म हुआ नेखंती फिरन तक में ना
1: नेखंती फिरन तक
0: फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत सा काम कमाया अपना और जो गीत के और रखे पर क्यों ना हम एक
1: वही मैं सोच रही हूँ कि ना कि गीत चला दे
0: एक गीत मदन मोहन का कंपोज किया गया
1: जी
0: तो हम रख देते हैं हमारे सभी सुनने वाले को लिए और अभी उसके बारे में और भी संदेश हम सब रखने वाले हैं

0: सुनने वालों, मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 बगदाद में हुआ और मृत्यु हुई 14 जुलाई 1975 मुंबई महाराष्ट्र में।
1: जी जैसे कि आप अभी सुनाए बायोग्राफी जो मदन मोहन का जो 1924 में जन्म हुआ और 1975 में उनकी स्वर्गवास हो गया, वो इतना अल्प आयु में उसका और यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए, कितने साल के थे उस समय?
0: वो 51 साल के थे।
1: तो सुनने वालों, 85 तक यार के आयु में और मदन मोहन जी ने और कितने साल उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सहयोग दिए, यानी कि जो गीत आदि से वो उन्होंने, क्योंकि ना कि सिर्फ शुरू शुरू में उन्होंने अपना गीत को गाए, फिर उसे वो पसंद नहीं था उसके आवाज़, और फिर उन्होंने फिर जा कर के कलाकारों के माध्यम से यानी कि जैसे लता जी, मुकेश जी और किशोर कुमार जी, अलग अलग लोगों के साथ और उन्होंने गीत को गवाए ना।
0: हाँ जी, उनका काम करने का समय रहा है 1950 से लेकर 1975 तक।
1: 1950 से लेकर 1975 तक उन्होंने काम किया।
0: वह एक महान गायक और संगीतकार थे।
1: सुनने वालों, तो इस प्रकार से मदन मोहन सहित उनके बारे में हम सब बहुत कम सुने होंगे। बस यही है कि रेडियो द्वारा शायद हम सब और उनका जो गीत चलाते हैं तो उनका नाम बस अर्ज कर लेते हैं ना शांता जी।
0: 1971 में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।
1: कौन सा फिल्म पे उन्होंने और फिल्म अवार्ड को यानी कि अवार्ड को प्राप्त किए बबली जी?
0: फिल्म दस्तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन,
1: बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का और अवार्ड को प्राप्त किए। शांता जी आप कुछ सुनाने वाले थे।
2: मैं ये कहना चाहती थी, बबली जी ने कहा कि 1950 यानी 1975 तक से, तो 1975 तक ये कलाकार जो हैं मदन मोहन जी, यानी कि हम भी सोच के बारे इतने देर में मैं थोड़ा सा अकाउंट कर ली है कि उनका आयु जो 85 तक यार के था ना, तो लगभग 25 साल वो अपने ये काम की है।
1: जैसे मैंने सुना है शांता जी कि जब वो फिल्मी में आए, क्योंकि पहले जो वो लोग भारत में एंट्री लिए ना, क्योंकि इराक में जन्म हुआ उनकी।
2: हाँ।
1: और भारत में आए तो उनका पिता जो जा करके फिल्मी दुनिया में और अपना उसमें जा करके मिल गए, जिसका नाम, उनका पिता का नाम जो राय बहादुर चुन्नी लाल से लोग जानते थे, फिर मदन मोहन को और उन्होंने आदेश दिए कि तुझे मिलिट्री में जाना है, और मिलिट्री में उन्होंने जा करके अपना काम भी किए। फिर उसके बाद में जो जा करके वो, उसे गाना का शौक बहुत था और कहा जाता है कि वो कितने घंटों और ग्रामाफोन के पीछे बैठते थे। तो ये ग्रामाफोन है क्या चीज शांता जी?
2: ग्रामाफोन तो मैं अपने दिमाग के अनुसार तो मैं बता सकती हूँ, अगर आपने ये जो आपने तो मैं देख रही हूँ, जैसे प्लेटर स्पेलर आई साइड पे ना, और ऊपर में एक बड़ा सा
1: पिकअप के तरह
2: पिकअप के, हाँ
1: होते थे
2: हाँ, तो उसमें से आवाज निकलते थे, और मेरे ख्याल से उसको भी
1: अपवेंद कर किया जाता था पहले के समय।
0: उसमें एक चाबी होती थी शांता जी, चाबी को वैसे घुमा के तो फिर रिकॉर्ड चलता था।
1: तो इस प्रकार से होते थे। सुनने वालों ऐसा भी होते थे, और उन्होंने कितने घंटों पहले यानी कि ये गायक बनने से पहले और राइटर बनने से पहले कितने समय तक उन्होंने उसके पीछे बैठे रहते थे। तो बबली जी आप कुछ और सुनाने वाले हम सबको।
0: मदन मोहन जी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में वे एक सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद तथा लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गजलें गवाई, जिनमें आपकी नज़रों ने समझा फिल्म अनपढ़ 1962 में गीत शामिल हुआ। इनके मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी थे। जब ऋषि कपूर और अजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो गायक के रूप में किशोर कुमार का नाम आया, परंतु मदन मोहन जी ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज़ तो रफ़ी साहब की ही होगी और अपने मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी से ही गवाया और लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई।
1: बबली जी, लैला मजनू एक दुनिया का और जो बॉलीवुड का एक ऐसा फिल्म हुआ जिनका याद आज तलक अभी तलक किया जाता है।
0: हाँ जी, और उसमें गाने बहुत मशहूर हुए, संगीत भी बहुत हिट हुआ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो एक गीत वो कोई पत्थर सा, कैसे आपने कहा?
0: कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो हम चला देते हैं।

0: सुनने वालों, यहाँ तक था जो सुंदर सा गीत निकाला गया लैला मजनू से। और शांता जी भी मैं देख रहा हूँ अपना तैयारी कर चुके हैं। शांता जी, आप क्या सुनाने वाले हैं हम सबको?
1: या मदन मोहन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हे बखोन इन बॉलीवुड वर्कन आस असिस्टेंट फॉर म्यूजिक रेजिस्योर से रामचंद्र एंड क्रेग एन एस्ट ग्रोथ फिल्म मेट आंखें एंड दैट वेल ऑफ 1950 एंड लिव द ड्रीहुक आंखें फिल्म जो जैसे बस्क्राइब कर है लिव द ड्रीहुक द फिल्म वाज अ सक्सेस फिल्म आंखें वाज अ सक्सेस।
0: जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पहला फिल्म मदन मोहन का फिल्म आंखें जो 1950 में और बनाया गया
1: जी 1950 में बनाया गया। और ये फिल्म जैसे मैंने कहा वाज अ सक्सेस। Vervolgens kwam er behoorlijk wat werk bij Mohan ji. Onder zijn eerdere films was de trilogie van films met zijn jeugdvriend Raj Kapoor. Aashiyana, film Aashiyana in 1952. En Dhoon ook in 1952 en Papi. In 1953. Helaas voor Madan Mohan hadden de films waarvoor hij componeerde niet veel impact. En alleen met Bye Bye 1956, waarin de legendarische gebroeders Kumar, Janik Ashok Kumar, Kishore Kumar in de hoofdrol speelden, kreeg hij enige succes. जी हाँ, इतने फिल्म में तो फिल्म भाई भाई में जाकर फिर से उनको एक सक्सेस मिला है।
0: और शांता जी, जैसे कि मैंने सुना है कि अवार्ड आदि शुरुआत में उन्होंने नहीं पाया ना कोई फिल्म में, वो जाकर के जैसे अभी बबली जी कह रहे थे कि नेखंतीन एनन सैफन तक में पास जाकर के और अवार्ड का हकदार बने। तो हर एक कलाकार का ये इच्छा भी होते हैं कि मेरा कैसे मेरा कार्यक्रम हुआ, कैसा मेरा और जो मैंने अपना प्रोग्राम रखा कितना बढ़िया था, और उन पे जा करके कोई एक पुरस्कार मिल जाता है तो कितना अच्छा भी लगता है ना।
1: वो बात सही है,
0: पर उनको इस बात का था कि वो पुरस्कार नहीं पा रहे थे,
1: फिर भी वो अपना काम जारी रखा। हाँ, पुरस्कार के वो इंतजार नहीं की, पर भी अपन काम जारी रखा।
0: इस प्रकार से मैंने एक जो संदेश सुने हैं लता जी का, और उन्होंने अपने ओर से संदेश रखे थे, क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके अंतर्गत सुनाते हैं।
2: बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

0: चलो, लता मंगेशकर जी को अपनी बहन बनाया था मदन मोहन जी ने। लता और मदन मोहन के रिश्ते के जुड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन जी इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर जी ने कोई गाना नहीं गाया। मदन मोहन लता मंगेशकर जी को अपने घर ले आए और एक राखी देते हुए कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन जी ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का एक ही गीत गाया था, आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वचन देता हूँ आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। सुनने वालों, मदन मोहन जी के मरने के बाद लता जी ने वो वादा निभाया। यतीन्द्र नाथ मिश्र ने अपनी लिखी किताब लता सुर गाथा में इस वाक्य का जिक्र किया है कि लता ने भाई मदन मोहन की मौत के बाद भी उनसे किया हुआ वादा पूरा किया था। दरअसल साल 2004 में फिल्म वी जारा में मदन मोहन के कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया। तब फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए थे और हर बार की तरह भाई बहन की जोड़ी ने कल्याण जी गीतों की रचना कर दी।
1: फिल्म जो वीर सारा में और जाकर के और उन्होंने ये गीत को गाए, तो बबली जी ये बात हो जाता है कि वीर सारा बना नेकती फैन सेवन तक में जब मदन मोहन का मृत्यु हो गया तो वीर सारा तो 2004 में बनाया गया, यानी कि कुछ 30 साल बाद।
0: क्योंकि मदन मोहन जी ने कुछ ऐसी धुनें तैयार करके रखी थी जो 30 साल बाद उनके बेटे ने फिल्म वीर सारा में इस्तेमाल की।
1: तो सुनने वालों, एक कार्यक्रम में जो हमारे फनकारों की दुनिया में आज रखा जाता है कि 30 साल बाद, यानी कि इस प्रकार से हमारा भाई महेंद्र गुदर भी यहाँ होते थे स्टूडियो में और वो भी कितने गीत को चलाए जो यहाँ से चलाया जाता था कि जो कोई फिल्म में नहीं प्रयोग हुआ था। और इसी प्रकार से आज जैसे आप कह रहे हैं कि 30 साल बाद वीर जारा में उनका कंपोज किया गया गीतों को और जाके उसी का धुन में और जा करके रखा गया, और ख़ास करके उस समय जबकि लता मंगेशकर का और ध्यान 2020 तक में हो गई ना, 2020 तक में वो मृत्यु को प्राप्त कर लिए और फिर भी 2004 में वो जा करके और जो 30 साल पुराना बनाया गया यानी कि लिखा रहा उसे प्रयोग नहीं किया गया था और वीर सारा फिल्म में जा करके प्रयोग किया गया उसी धुन पे, और उसमें ना सिर्फ लता जी ने अपना आवाज़ दिए पर सोनू निगम और भी कलाकारों ने अपना आवाज़ दिए ना।
0: हाँ जी, उदित नारायण,
1: उदित नारायण के सिवा और भी कुछ
0: रूप कुमार राठौर
1: जी भी अपना आवाज दिए, पर सभी का धुन, क्योंकि एक बात होता है ना,
0: गुरदास मान जी भी
1: अपना और संदेश उसमें अपना और कला से प्रदर्शन दिए, पर ये बात हो जाता कि कलाकारों जो राइटर होते हैं ना, जो गीत को लिखते हैं, तो वो धुन भी उसी का होता है। हमारे जो गायक होते जो अपना आलाप देते हैं उसमें, तो वो तो सिर्फ गीत गाते हैं। और शांता जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: उनके बारे में कहना भी मुश्किल, क्योंकि गला होना चाहिए और उसमें गाना गाने में भी एक कला है।
1: गाना गाने में भी एक कला है, जरूर उसका आवाज सुनाई दिया जाता है, पर उसके पीछे में जो काम होते, जो राइटर होते, जो गीत को लिखते हैं, गीत में गीत को धुन देते हैं, उसके बारे में हम सब बहुत कम जानते हैं, ऐसा है कि ना?
2: ये बात तो सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल सच है ये।
1: जो बिल्कुल उतना काम होने पे और बस गायक जिसे जिसके पास वो कला होता है, उसके पास आवाज होते हैं और वो उसी धुन पे चला देते हो, कितना रंगीला हो जाता है, कितना सुरीला हो जाता है, हमारे कानों को इतना अच्छा लगता है सुनने में ना।
2: बिल्कुल जी हाँ, आप सुनते हैं फनकार की दुनिया। तो यहाँ हम प्रोग्राम बनाते हैं मदन मोहन जी के बारे में, और यहाँ पे भी कुछ लाइन मदन मोहन जी अपने आवाज़ में कुछ गाकर भी सुनाएंगे, साथ में लता जी भी रहेगा, तो यहाँ से ज़रूर से आप उस पर गौर करें और ज़रूर से आनंद उठाएं।
3: इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुनीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
4: याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात है। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म

0: उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।
1: मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया, इब्तिदा, आशियाना।

0: jaren 50 met 60 of 70 met je मदन मोहन जी अपने साज और संगीत के साथ हमारे खातिर बहुत से गाने बनाए हैं, फिल्म बनाई है। और यार फैफ तक तो सैस तक उतना नहीं चला, बल्कि सैस तक से तो फैफ सेफ तक जब तक ये रहा बहुत चला इनका गीत। पर नेखतीन फैफ सेफ तक 1975 में इनका ध्यान भी हो गए हैं। इन फैफ तक यार खलीफ थे सिर्फ मोहन जी आन लेफर सिरोस इरोनिस या लेफर सिरोस यानी कि लेफर की बीमारी से इनका ध्यान हो गया।
1: शांता जी, जैसे कि सुना है मैंने कि उसे उस समय पे बड़े बड़े फिल्मों में, उस समय क्योंकि वे फिल्में बन रहा था तो राज कपूर का समय था, देवानंद का समय था, तो सबका अपना अपना और ग्रुप बन गया था, पर इन सभी में क्या ऐसा नहीं लिखा गया कि मदन मोहन जी ने खास इस सब से जुड़े हुए थे, ये अपना अपार्थ रहे पर सभी फिल्मों में ये अपना सहयोग दिए गए ऐसा?
0: हाँ, जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड में रहा पर भी जैसे फंडेरिंग था फिल्म का और ये कलाकार लोग के एक फंडेरिंग था तो ऐसे ही आगे बढ़ा। और सिर्फ राजकुमार जी जुड़े नहीं थे, हम भी जुड़े थे उन दिनों में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता, आज भी अच्छा लगता है वो सब फिल्म देखने के लिए, राज कपूर के और देवानंद जी का, और उनका गाना जो है तो रोंगटे खड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि शुरू शुरू में जब मदन मोहन जी का और जो एंट्री लिए ना फिल्मी दुनिया में, तो एसडी बर्मन के साथ और श्याम सुंदर के साथ उन्होंने असिस्टेंट काम किए, फिर उसके बाद में अपना काम जब प्रारंभ किया तो कितने ढेर सारे और गीतों को बनाए, गीतों को कंपोज किए और जाकर के फिल्मों में रखे। पहले हम सब जब एलपी मिलते थे ना हर एक फिल्म में, उसमें एक फोटो रखे जाते थे कि ये लता का और मदन मोहन का, तो हमें अभी वो ख्याल आता है कि मुझे ये नहीं पता था ये किसका है ये फिल्म में कभी, मुझे तो लगता था कि जैसे कि अभी आपने हम सबको शुरुआत में बताए सुनाए
0: जिम्मेदारियां
1: होता है प्रोड्यूसर का, और इस प्रकार से सॉन्ग डायरेक्टर का फोटो भी रखा जाता था जो एलपी के हुस पे, क्योंकि हर एक फिल्म में कितने ढेर सारे गाने होते थे।
0: पर कितने अच्छे से तुमने कहा ना कि लता जी के और ये फिल्म जो फिल्म जिस फिल्म का ये गीत चलता था तो जो खिलाड़ी उसमें था उनका पिक्चर तो यानी फोटो के तो बहुत बड़ा बड़ा दिखते थे, और जो हालांकि बहुत ज्यादा उसमें काम किया तो उनका फोटो बहुत छोटे थे,
1: एक छोटा सा फोटो। बिल्कुल, सुनने वालों इस बात को शायद आपको सुन को भी ख्याल आता होगा, और जरूर अगर आपके पास जो अभी प्लाट क्या कहते थे उसे एलपी और सिंगल हो तो जरा उस पे और कोशिश करके देख लेना, क्योंकि ये बस चंद दिनों तक देख सकते हैं आप।
0: और एलपी और
1: सिंगल होते थे,
0: सिंगल उससे पहले भी एक था,
1: एक हाँ जो ये था, एक था 45 तक, एक था 78 तक, और उससे पहले एक और था पर उसका नाम नहीं पता मुझे,
0: मेरे को पता नहीं, पर
1: हमारे सुनने वालों को शायद पता होगा जो उस समय अपने घर से जो पुराना कुछ, क्योंकि वो दीप लातवार इट्स देकर है
0: क्लोफ या और हम लोग के पास भी था घर
1: पे, तो मात रहा हाँ। तो वो कौन सा साइज रहा ये भी नहीं पता मुझे, यही पे ही था ना,
0: इसने कुछ है पता ना उतना ठीक से।
1: मुझे भी नहीं पता शांता जी, क्योंकि आप एक ही नाराजी और
0: हाँ, तो उसके बाद तक कैसेट आए तो फिर सीडे आए, अब तो यहाँ यूट्यूब पर जो चाहते हैं देख लेते हैं। पर यूट्यूब पे ऐसा भी है कि अगर वो सब गीत जो है वो डाउनलोड करके नहीं रखेगा तो आप भी नहीं सुन पाओगे, तो हमको भी शुक्रगुजार करना चाहिए कि वो सब जो डाउनलोड करके और रख देते हैं हमारे खात आसान कर देते हैं,
1: तो हम लोग के भी आसान हो जाता है कि हम लोग कंप्यूटर पे और नाम रखते हैं और उसका गीत हम सबको सुनने को प्राप्त हो जाता है। सुनने वालों कार्यक्रम आगे बढ़ाते हूँ, और बबली जी कुछ कहने वाले नहीं, शांता जी आप जो आपका संदेश पूरा हो गया,
0: पूरा तो नहीं हुआ है, पर मैं कहना चाहती थी कि जब आपको पता है कि कोई के जन्म भी होता तो मृत्यु भी हो जाता है, पर ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे लोग और दिन भी रहते तो कितना अच्छा होता, पर क्या करें,
1: समय का खेल निराला है।
0: वही तो मैं यह कहना चाहती कि कैसे बता रहे थे कि मदन मोहन जी की मृत्यु कैसे हुआ और कहां पर कैसे हुआ। तो जैसे हमने कहा इन नेखन तीन फैफ से फंतक अप इन फैफ तक यार खलीफ तेत स्तीरफ मोहन आन लेफन सीरोस।
1: तो ये लेफर का कुछ, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है कि वो शराब का भी शिकार हो गए थे ना, तो शराब पीने से लोग कहते हैं कि लेफर खराब हो जाता है, और एक फिल्म भी बनाया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन बार बार ये शिकार करते हैं। कौन सा फिल्म में था?
0: मेरे ख्याल से सत्य पे सत्ता।
1: हाँ, सत्य पे सत्ता में, तो उसमें ये संदेश रखता है अमिताभ बच्चन की दारू पीने से लेवर खराब हो जाता है,
0: बहुत ज्यादा दारू पीने से लेवर खराब हो जाता
1: है। सही बात, आपने पूरा डायलॉग सुना दिया है, और सुनने वालों यही बात हुआ कि शायद मदन मोहन जो एक सोनखरौत आर्टिस्ट जो जा करके और उसका मृत्यु जो एन फाइफ तक यार पे हो गई है, पर फिर भी आज तलक दुनिया के हर एक देशों में उनका गीतों को सुना जाता है। बबली जी भी कुछ रखने वाले हैं।
2: मदन मोहन जी संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। गायिका बेगम अख्तर जी कहती हैं, बेगम अख्तर जी की गजल गायन का प्रभाव भी मदन मोहन जी की बंदिशों में सुनने को मिलता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मदन मोहन जैसी गजलों की रचना करने में कोई फिल्म संगीतकार सफल नहीं हुआ है। मदन मोहन की कुछ लाजवाब गजलें हैं, उनको यह शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। आज सोचा तो आंसू भर आए, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, इसी में प्यार की आरजू और हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ प्रमुख हैं।
0: जिंदगी जीना एक कला है, जिसने ये कला सीख लिया वो जिंदगी जीत लिया। सुने वालों, आपने सुन रहे थे फंकारों की दुनिया। स्वीकार कीजिए शांता की। नमस्कार।

नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। सुनने वालों, यहाँ तक जो कार्यक्रम फनकारों की दुनिया हम सब आपके लिए रखे, हमारे साथ दिए बबली आसरा जी और शांता खेमाई जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ कि जरूर इस कार्यक्रम को सुनकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

जय श्री राम। राम के अनन्य भक्तों, प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गोपाल परदेसी बाबा की तरफ से राम राम। नाना प्रकार के राम अवतारा, रामायण सबको किए अपारा। भक्तों, जिस प्रकार समय समय से राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में दुनिया में भी विभिन्न प्रकार से रामचरित का वर्णन किया गया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों भक्तों में से राम कथा के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो भक्तों, भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया। फिर भगवान से सुनकर ये प्रसिद्ध कथा काकभुशुंडी जी ने अपने पक्षियों के समूह में बैठकर गरुड़ जी को सुनाया। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की। तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। रामायण में सबसे अधिक मूल्यवान यानी विशेष बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण ये कथा मानव को सच्ची राह दिखाती है। भक्तों, इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणियों ने अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। प्रिय प्रभु प्रेमियों, ये महान गाथा संप्रदाय और जात पात को ना देखते हुए हर प्राणी की आत्मा को छूती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती के प्राणों में शक्ति प्रदान करती है, हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब हमारे मन में प्रेम, सच्चाई और विश्वास हो। ये राम कथा रस गंगा जहां भी बही, सबने उसका स्वागत किया, फिर चाहे वो धरती का कोई भी कोना क्यों ना हो। सज्जनों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए श्री राम के प्यारे भक्तों, शुभारंभ करते हैं रामायण का प्रथम

वंदनीय है। प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तगणों, कवियों के समाज में चंद्रमा के समान सुशोभित श्री तुलसीदास जी के अनुसार राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, अर्थात प्रभु श्री राम जी के लीलाओं की गाथा अत्यंत सुंदर है एवं प्राणी मात्र की प्रत्येक शंका का समाधान करती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम से बड़ा और कोई नाम नहीं है और श्री राम के कथा से बढ़कर पुण्यदायिनी अन्य कथा नहीं है। आज आप और हम श्री रामायण के बाल कांड का रस आस्वादन करेंगे।

शैल सुता पार्वती को जब तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए, तब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब शिव जी पति रूप में अवश्य मिलेंगे। और भक्तों, उधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव भोलेनाथ को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे आदिदेव, हे प्राणनाथ, हे कृपा निधान, मुझे उस नाम का रहस्य बताइए जिसका आप सुमिरन आओ।

शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे काक मुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। जगत प्रसिद्ध के कई देश में धर्म और नीति का पालन करने वाले प्रताप भानु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन था एवं धर्म रुचि नाम का बुद्धिमान मंत्री भी था, परंतु विप्र समुदाय के श्रापवश उनको कुल समेत राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये तीनों ही क्रम से रावण, कुंभकरण एवं विभीषण के नाम से पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए।

भगवान अग्निदेव ने यज्ञ से प्रसन्न होकर जो हविष्यान राजा को दिया था उसे खाकर तीनों रानियां कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा गर्भवती हो गई। तीनों रानियां मन में बड़ी हर्षित हुई। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए चहुं ओर हर्षोल्लास छा गया। इस प्रकार 9 माह बीत गए जब और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। नक्षत्र योग लगन एवं वार सभी अनुकूल हो गए। पावन चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना सर्दी थी

प्रभु श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चूड़ाकरण नामकरण उपनयन आदि संस्कार विधिवत किए गए। भगवान श्री राम जी ने अनेक प्रकार की मनमोहक बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। एक बार माता कौशल्या ने बाल रूप श्री राम को पलने में सुलाकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने बालक श्री राम को वहां भोजन करते देखा। माता पलने के पास गए तो शिशु को पलने में सोता देखकर विस्मित रह गए। भक्तों, इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए श्री राम जी सबको विस्मित करते

महाराज दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर जैसे ही कहा कि मुनिवर, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, ये चार पुत्र मैंने वृद्धावस्था में बहुत प्रयत्न से पाए हैं, आप इन्हें छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, चाहे मेरे प्राण मांगो, मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और राजसभा से उठकर चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और राजा को समझाया कि राजन, राम लखन को आप मुनिवर के साथ भेज दीजिए। राम लखन कोई साधारण बालक नहीं,

प्रभु श्री राम तो पृथ्वी पर नर लीला रचाने और राक्षसों के विनाश हेतु अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने मारीच की मायावी शक्तियों को देखकर उसे बिना फर का बाण मारकर लंका भेज दिया, ताकि सीता हरण के समय वहां स्वर्ण मृग बनकर काम आ सके। इसके पश्चात महामुनि विश्वामित्र के पास मिथिला के महाराज राजा जनक के यहां से सीता स्वयंवर का समाचार आया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लखन को साथ लेकर मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जो श्रापवश पत्थर बनी थी, भगवान की चरण कमल पड़ते ही नारी रूप होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक में

श्री गंगा जी की पूजा अर्चना एवं स्नान करके मुनि विश्वामित्र आनंद कंठ भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ लिए जनकपुरी में पहुंचते हैं तथा वाटिका में ठहर जाते हैं। राजा जनक वाटिका में ही उनसे भेंट करने पहुंचते हैं। मंगलमूल श्री राम को देखकर जनक जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो मुनिवर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जानकर प्रभु श्री राम गुरु जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेकर नगर के बाजारों में घूमकर आते हैं।

प्रभु राम के अनन्य भक्तों, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार महादेव के धनुष पर प्रत्यांजा यानी धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और आज धनुष यज्ञ का वो पावन दिन आ गया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश देश से राजकुमार पधारे हैं। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी धनुष यज्ञ में आए। रंगभूमि की शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक का मंत्री स्वयंवर में आए हुए राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई।

राजा जनक की शोक एवं व्यंग भरी वाणी सुनकर शेष अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, सूर्यवंशी वीरों के होते हुए धरती को वीरों से खाली कहना अनुचित है। यदि भैया श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं विध्यांचल पर्वत को फूंक मारकर मच्छर के समान उड़ा सकता हूं। इस धनुष की तो बात ही क्या। तो भक्तों, तब मुनि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करके श्री राम जी को कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर जनक के शोक दूर करो और उनकी प्रतिज्ञा पूरी करो।

बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र जी की जय जयकार से संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। नगर में बाजे बजने लगे। सज्जन लोग प्रसन्न एवं दुष्ट उदास हो गए। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तभी शिव धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी रंग भूमि में आ पहुंचे। तन पर विभूति, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, सिर पर जटा शोभायमान हो रही है, कांधे पर तरकस एवं एक हाथ में सुंदर फरसा धारण किए हुए हैं। सबने मुनिवर को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया एवं मुनि विश्वामित्र गले मिले।

ऋषि परशुराम का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। जब श्री राम जी ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारा सिर तो सदैव आप ही के चरणों में रहा है, आपके चरण हमने छाती पर लिए हैं, ये कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी को उनके पूर्वज भृंग ऋषि जी का पद चिन्ह अपने हृदय पर दिखाया। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो स्वयं श्री नारायण है। तब उन्होंने बारंबार श्री रामचंद्र जी की वंदना की और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की।

प्रभु श्री राम जी के भक्त जनों, इस प्रकार श्री राम जी और जनक दुलारी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बारात जिस समय अयोध्या वापस आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। माताओं ने सीता सहित चारों बहुओं की आरती उतारी, मंगल गान हुए। राजा ने बहुमूल्य हीरे मोती स्वर्ण गौ आदि दान किए। प्रभु प्रेमियों और श्री राम जी के भक्त जनों, जो भक्त प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र एवं विवाह गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बाल रूप श्री राम जी की।

प्रेमी भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रथम कांड जो बाल कांड के नाम से प्रसिद्ध है यहां समाप्त हुआ और अब आप दूसरा यानी अयोध्या कांड सुनिए।

0: या दोस्तों, सबसे पहले हम सभी को राम राम नमस्कार अदाए वर्ष कहते ही मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सरजू। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से एक रिश्ता है, आज भी हमेशा की तरह आज भी होंगे कुछ प्यारे प्यारे और मीठी मीठी बातें ऐप द्वारा, जहाँ तक आवाज़ पहुँचे हमारा प्यार भरा दुलार पहुँचे, प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, जैसे सब आप जानते हैं। तो आज शुक्रवार है, फ्रेडक फिर सितंबर हो चुका है और आज का दिन एक बहुत ही बढ़िया दिन है, खूबसूरत दिन है, सुंदर दिन है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन है जो धूमधाम से लोग मना रहा है। हर एक मंदिर में ये पूजा हो रहा है और हर एक मंदिर में इसका जन्मदिन मना रहा है। हर एक जो जाना चाहते हैं मंदिर में जा सकते हैं। आज भी जुमा भी है, दो चीज़ें शुक्रवार के बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारा हर एक मुसलमान भाई और बहनों के जुमा मुबारक हो। जहाँ पे दुख है, जहाँ पे सुख है, जहाँ पे मातम है, पूरा टीम फाहून के हमारा डायरेक्टर कुमार घिराव भी हम सब आपके दुख में सुख में शामिल है। आज का प्रोग्राम जो है अभी हम चलाएंगे कुछ भजन चलाएंगे कृष्ण के, उसके बाद दो हम चलाएंगे जुमा के दो गाना, उसके बाद हिले मिले जुले गीत होगी और दो बजे से तीन बजे तक हमारा प्रोग्राम सवाल और जवाब का प्रोग्राम है। हम सवाल एक मंगलवार के भूल गया था पूछने के लिए, अब हम सवाल को पूछते हैं। बढ़िया से सुनना, ठीक से सुनना और मुझे ऐप कर सकते हैं, ऐप खुल गया है, तार का नंबर है 0-3-8-0-8-3-3-2। हम सवाल पूछते हैं, उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ के तरफ, आप जहां पे न्यूज़ सुनेंगे और कुछ रिक्लामा है। सवाल है, अगर एक बच्चा पैदा होता है इंडिया में तो उसका दांत सफ़ेद है, उज्जर है, अगर एक बच्चा अफ्रीका में पैदा होता उसका दांत कौन सा कलर है, कौन कलर है? यह हमारा सवाल है, जो सही जवाब को देगा, सवाल के हल दे देगा, उसके हक बनते हैं एक गाने मांगने के लिए और हम वादा करके वादा निभाना जानते हैं। अगर हम नहीं तो हमारा कोलेगा आप लोग के गाना ज़रूर सुनाएंगे। एक बार फिर से हम सवाल को पूछते हैं, अगर एक बच्चा पैदा होता है इंडिया में उसका दांत सफ़ेद है, उज्जर है, और अफ्रीका में जो लड़का पैदा भाई है तो ओकर दांत कौन कलर है? ठीक है दोस्तों, ये सवाल बढ़िया सुन लिए, मुझे ऐप कर सकते हैं। एक बार फिर से तार का नंबर है 0-3-8-0-8-3-3-3। हम यू आया चलो मिल के सुनते हैं न्यूज और कुछ रेखलाम।
1: कातुन का तौर आन दराम सूद वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 0151-29-52-227.
3: Voor hulp bel nu 0151-29-52-227.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahun.
5: Digitale radio. Fahunfm.nl.
6: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier.
7: Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जी हाँ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा स्टूडियो में आज हमारा उस्ताद बीरबल भी है, हमारा उम्र पर है, और रीनिया भौजी है, राबिया है। आज यहाँ पे खाना पकेगा, फेगेतारिस कढ़ी चढ़ चुका है, दाल बन रहा है, पोहड़ा बन रहा है, लव बोट में यहाँ पे शांता लव बोट में कढ़ी पक रहा है, दाल पक रहा है और कोहड़ा भी पक रहा है, चटनी है पुमुस्तेरी का जो सूरीनाम से आया है। आज फेगेतारिस से आज हमारा कृष्ण का जन्मदिन है और हम सब मिलकर जन्मदिन को मना रहे हैं। हर एक मंदिर में जन्मदिन को हम सब मनाते हैं और हम सब जो जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मंदिर में श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मना रहा है। ठीक है दोस्तों, आज कृष्ण जन्म अष्टमी है, हम कुछ भजन आप लोग को सुनाएंगे, कृष्ण के स्पेशल सॉन्ग से ही हम चलते हैं। मैं नहीं माखन खायो रे लल्ला मोरी, और गाने वाला है अनूप जलोथा, लाइव कॉन्सर्ट में ही गाना को गाया है, सिंगर है अनूप जलोथा, म्यूजिक भी है अनूप जलोथा और लिरिक्स भी है अनूप जलोथा की। चलो दोस्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं। हर एक को एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा भी है, हर एक को जुमा मुबारक हो।

बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है।

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है।

नहीं चला यह तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं।

माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई,

नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं।

असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने।

विशेष बात हो गई, मां को ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी।

मैया, दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं, दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया है। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का

जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं माखन खायो, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोथा की आवाज़ से। और कृष्ण जन्माष्टमी है, कितने नाम थे हमारा कृष्ण का, कन्हैया थे, कान्हा थे, बिहारी थे, हर एक नाम से लोग उसे जानते ही। आज उसका जन्मदिन है और हर एक मंदिर में, हर एक गांव में मंदिर है, हर एक मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, हर एक वेलकम है। जाइए, खाना पीना सब है, कृष्ण को देखिए, अभी झूला झुलाएंगे सब कृष्ण को, झूला झुलाएंगे कृष्ण भगवान को। जाइए देखिए और मजा लीजिए और देखिए कैसे कृष्ण का जन्मदिन सब मनाते हैं। घर पे जितने लोग पूजा किया है अपना, हर एक पूजा करने वाले के हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और अपना पूजा करते रहना, क्योंकि उसी में है दम। जो जुमा करते, आज जुमा भी है, बहुत खुशी का दिन है, आज जुमा भी है। हर एक जुमा जो अपना जुमा वाले जो अपना नमाज को पढ़ा है, हर एक जुमा वाले के अल्लाह ताला हर एक दुख से बचाए, हर एक बीमारी से बचाए, हर एक गुनाह करने से बचाए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं एक गाना लेकर, कृष्ण के जो जगजीत सिंह ने गाया है उसका लिरिक्स जो है लिखा गया है, हाथ कलम स्याही जो चलाया वो है सूरदास, और म्यूजिक खुद जगजीत सिंह ने बजाया है। हम चलते हैं बहुत सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, बहुत ही अच्छा कृष्ण का ये भजन है।

जी हाँ दोस्तों, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अभी आप सुने थे जदित सिंह की आवाज से। आज कृष्ण का जन्मदिन है, जिसे लोग कन्हैया कहते हैं, कान्हा कहते हैं। और अभी आपने सुना था, मैं नहीं माखन खाया, कितने झूठ बोला है, गांव भर के औरत के नचा रहा थे, लेकिन सभी को उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत दुलार करते थे, और झूठ बहुत कहते थे, माखन बहुत खाते थे। हर एक घर में जहां माखन टंगा है, वो फोड़ के घर तोड़ के घर माखन खा के चला जाता था। और तो भी लोग इतना गुस्सा करते, उसे देखते ही लोग खुश हो जाते थे और बहुत बहुत प्यार मोहब्बत करते थे कृष्ण से। आज उसका जन्मदिन है। एक बार फिर से कहता हूँ, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक जगह पे मंदिर है, आप सब जाके कृष्ण जन्माष्टमी आज मना रहा है। अभी 6 बजे या कई बजे उसे झूला झुलाएंगे, वो भी हम देखना चाहते हैं, हम देख चुके थे। अगर आप नहीं देख कभी नहीं देखा है, तो जाइए मंदिर में, अपना सब चीज़ देख सकते हैं। और आज जुमा भी है दोस्तों, जो जुमा की नमाज पढ़ते हैं, आज भी हर एक गांव में मुस्कई है, जाइए और जुमा को पढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अगर मदद करने वाला है तो वही सब है जो हम लोग की मदद करेगा। सफा दिल से मांगिए, भगवान हमारा भगवान अल्लाह ताला हर एक को, हर एक चीज़ सुनते, हर एक पुकार को सुनते हैं, और वही लोग है जिससे हम लोग चीज़ मांग सकते हैं। दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, इस वक्त सभी कुछ हो रहा है कि जो हम नहीं सोचते वो भी हो जाते हैं, बस ऊपर वाला के हाथ में है। जाइए मंदिर को, जाइए मस्जिद को, जाइए अपना अपना पूजा, अपना अपना दुआ को मांगिए कि इस दुनिया में जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए। हे मालिक है अल्लाह ताला, यही हम मांगते, दुआ मांगते, प्रार्थना करते हैं। हर एक घर में दुख है, जहाँ पे देश में दुख है, हर एक दुख को दूर कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा था, प्रोग्राम को बना के लाया हूँ, सजा के लाया हूँ। एक बार फिर से चलते कृष्ण के भजन।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, सच में ही किशोरदा ने, किशोरदा की आवाज़ थी, किशोरदा ने इस गाने को गाया है, इस भजन को सच में कहा है। जसोवती मैया ने उसको जन्म दिया था, लेकिन गांव भर का माँ उसका माँ थे, सबके गुस्साते थे, लेकिन पल भर में वो सबको हंसा देते थे, ऐसा था हमारा कृष्ण। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही एक बार वीर से एक कृष्ण का भजन आप लोग सुनाते हैं, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सो रहे थे गोविंदा आला रे, ये भी हमारा कान्हा के गाना है, मूवी है मुकाबला, नई खंती नई सीवन तक का ये गाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, हम एक बार फिर से कहते हैं आज शुक्रवार है, आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी है और आज जुमा भी है। बहुत ही बहुत फख्र की बात है कि आज दो चीज एक रोज पे हो चुका है। हम दोनों को कहते हैं ठीक से सुनना, जाना मंदिर, जाना मस्जिद को जाना, अपना अपना पूजा, अपना अपना दुआ को मांगिए कि इस दुनिया के प्रॉब्लम चला जाए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे प्रोग्राम में, हम सुनाते हैं एक और भजन जो हम मिलकर सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, बड़ा नटघट थे अभी आप सुने थे कान्हा का एक और भजन है। आप सब जानते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हर एक मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। इधर इस वेलकम, जाइए, खाना पीना सभी कुछ है। खाने के लिए आप नहीं जाते लेकिन फिर भी खाना भी मिलते है। जाइए देखिए कृष्ण के क्या है, उसका जन्मदिन पे क्या हो रहा है, कैसे है। और हर एक को हम यही कहते हैं शुभ शुभ शुभ कृष्ण जन्माष्टमी के आज हर एक मुबारक, हर एक को हम कहते हैं जुमा मुबारक। और हर लोग जा सकते हैं अपना मस्जिद को, जाइए जुमा है, अपना अपना दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और यही मांग कीजिए। ये दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों और हर एक प्रॉब्लम मांगने से सॉल्व हो सकता है, अच्छा हो सकता है। आप लोग मांग के देखिए, एक बार जाइए, अपना अपना पूजा अपना अपना नमाज को मत भूलना। वो इस बहुत बहुत बहुत बुलंगाईकर बहुत बढ़िया चीज़ है इस समय में। वही है ऊपर वाला जो हम लोग के हर एक चीज़ देगा अगर हम नहीं मांगेंगे। ढूंढने से हर एक चीज़ मिल जाए तो क्यों भगवान नहीं मिलेगा, क्यों अल्लाह नहीं मिलेगा, हर चीज़ ढूंढने से मिल जाते हैं। चलो दोस्तों, हम आज हमारा साथ स्टूडियो में लाल है, लाल रसोगा भी है, जल्द से जल्द हम सब उसे भी फाउंड रेडियो पे सुनेंगे। अभी वो सीख रहा है, हमारा साथ बैठा है लाल रसोगा जो है, वो भी जल्द से जल्द आप लोगों से फाउंड रेडियो पे जरूर सुनेंगे। हमारा एक उम्र पर हो जाएगा, हमारा कलीखा हो जाएगी फाउंड के रेडियो पे। और आप सब जानते हैं, आप सब चुने देफा ग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम हैं अनिल सारजू, अब से लेकर 11 बजे से हमारा प्रोग्राम है। अब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते ही ऐसे ही सुनते रहना, काफ़ी ऐप आ चुका है, काफ़ी सही जवाब आ चुका है। हम चलते एक बार फिर से अभी बात में बात करेंगे, सवाल भी करेंगे आप लोग के लिए एक बार फिर से। तब तक के लिए हम चलते हैं कृष्ण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे छुप छुप मेरा रोवे, ये भी एक भजन ही हमारा प्यारे प्यारे कांधा के लिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते एक भजन की तरफ और उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और रिक्लामा की तरफ, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे माखन चोर। सच में कहाँ है कृष्ण जी, हर एक घर में कूद के तूर के दरवाजा माखन को खा के चला जाते थे। गांव भर के माँ जो है सब गुस्सा जाते, लेकिन जो कृष्णा के देख के सब खुश हो जाते हैं। यशोदा मैया ने जन्म दिया था और उसे पाला है गांव भर के माँ। ये सच कहानी है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए मंदिर को, आज हर एक मंदिर खुला है, जाइए प्यार से बैठिए और प्यार से सब चीज़ देख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप लोग के जैसे वादा के मुताबिक हम आप लोग को ले चलते हैं न्यूज़ और कुछ बयान है दोस्तों। देखा जाए तो हम यहाँ पे करते हैं, आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट वाहन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज़। गुडमिडाग, ik ben Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugde hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer
0: 070-365-2247. Ja, dus dat we hem zo reclame hebben. Mr. Johnny No. 1 ko bhi aap sun rahe the. ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था हमारा प्रोग्राम जो अभी आप सुन रहे थे, कृष्ण जन्म अष्टमी का प्रोग्राम थे। और अब हम चलेंगे, दो गाना हम चलाएंगे, दो कवालीम चलाएंगे। आज जुमा है दोस्तों, हर एक को जुमा मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह बरकात हो। हम दो गाना चलाएंगे जुमा के, और हर एक हमारा मुसलमान भाई बहन जो प्रोग्राम को खुद सुनते हैं, हम हर एक को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर एक के दुआ कबूल किया जाए, हर एक दुख, हर एक बीमारी से बचा जाए, हर एक गुनाह करने से बचाया जाए, और जो गुनाह हो चुका है उसका माफ़ी भी दे दिया जाए अल्लाह ताला। बस यही हम दुआ में मांगते हैं।

और एक को एक बार फिर से नाम सही लतीम फाहून और हमारा डायरेक्टर कुमार घिलाओ की तरफ से हर एक को जुमा मुबारक हो। हमले चलते एक और जुमा के गाना हम आप लोग सुनाते हैं, उसके बाद हम चलाएंगे कुछ गीतों, कुछ चुनमुन वाला गाना हो जाए क्योंकि आज शुक्रवार है दोस्तों, वीकेंड हो चुका है। हर एक को फेन वीकेंड कहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप कुछ काम में हो या कुछ काम में दाम पे हो और कार चला रहे हो, बच के हर एक चीज़ को करना दोस्तों, हर एक चीज़ को बचा के करना और बच के चलना, बच के करना, रास्ते पर हो बच के चलाना, बच के देख सब चीज़ देख के करना, घर पे हो सब कुछ बचा के करना, यही हमारा पूरा टीम से यही मांग है दोस्तों और यही करते हैं। आप है तो हम है तो आप है और आप सब चून है द एफ अगेन लव द लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे। एक आखिरी हम चलाएंगे जुमा के, हर एक जो जुमा रखा है या नमाज पढ़ चुका है, हर एक को जुमा मुबारक हो।

जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वालों, हर एक को जो जुमा का नमाज पढ़ चुका, हर एक को जुमा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। यहाँ तक हमारा दो जुमा के गाना था और हर एक को हम बहुत बहुत से बहुत बहुत से बहुत बहुत तारीफ़ करते कि आप लोग इस रेडियो को सुनते हैं। फ़ाहुन पे चून है, मैं नहीं हूँ, हम भी फ़ाहुन के एक उम्र पर है। अगर आप लोग को कुछ कहना है, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं हैं। इस वक्त हम द एवरग्रीन फ़ाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून है और जो भी है हमारा रेडियो है। कॉम्प्लीमेंट इज़ फॉर रेडियो फ़ाहुन हिंदुस्तानी की। ठीक है दोस्तों, जो हर एक चीज़ अल्लाह ताला से मांगिए। आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, आज मांगने से मत डरना, हर एक चीज़ मांगने से मिल जाते हैं। चलो हम सब मिल के मांगते हैं कि इस दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम ना आवे। लोग नेपाल में इतना बड़ा सा चीज़ हो गया, तुर्कैया में बोट डूब गया है, काफ़ी लोग के ध्यान हो चुका है, काफ़ी लोग के घर में प्रॉब्लम है। यही दुआ हम मांग सकते हैं, यही पुकार हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, भगवान से मांग करते हैं कि हर एक दुख निकाल दे भगवान, इतना ऐसे कर दे कि कोई देश में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने प्रोग्राम को बनाया ये भी मैं बताना चाहता हूँ। आज शुक्रवार है, थोड़ा फुरौलक गाना से हम चलते, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे तक सवाल और जवाब का है। आप मांग सकते हैं जो भी गाना आप मांग सकते हैं। नई खनतिंग तिंग से गाना गवा रहा है, आप नई खनतिंग ट्विन तक से गाना भी मांग सकते हैं 2 बजे से 3 बजे तक। तब तक के लिए हम चलते हैं सूरीनाम और हॉलैंड के जो कलाकार लोग हैं उसके गाना हम 1 घंटे आप लोग को सुनाते हैं। उसके बाद हम फिर चलेंगे चुनमुन वाला गाना। अब हम चलाएंगे कुछ सुनने वाले गाना जो हमारा लोग गाया है और उसमें भी चुनमुन वाला गाना है। आप सब जानते हैं डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं किरण केदार के तरफ, जहाँ पे वो तैयार हो चुका है गाने को गाने के लिए।

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे किरण केदार की आवाज। दोस्तों में जैसे मैंने कहा था, एक घंटे का प्रोग्राम हम चलेंगे, हमारा सुरीनाम देश की और हॉलैंड देश की कलाकार को हम आप लोग के तक पहुंचाऊंगा। चलो हम देखते हैं दोस्तों, सुरीनाम का म्यूजिक फॉर मास्टी दस्तार, दस्तार प्रकीत मिक्स रोहित राय से हम सुनेंगे कुछ डांस नंबर, चुनमुन करेंगे घर पे है आप खाने पकाते हैं, और इस वक्त बात ऊपर 12 हो चुका है, जरूर आप लोग खाने खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं या खाने को पका रहे हैं, कहते हैं कन्या के डोक्सी बज गए आज खाप गरमाए के, जो भी करते हैं खाने के वक्त पे हम चलाते हैं चुनमुन वाले गाना, ठल्ले ठल्ले आप चुनमुन कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी चुनमुन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारा लाल भाई इस वक्त चुनमुन में तैयार हो चुका है और लव बोट में खाना पक रहा है, क्योंकि आज आज हम लोग फीके तारीख खाते हैं, कढ़ी के समाग जीरा यहाँ तक मई के है, और दाल पकड़ा है, कोहड़ा पकड़ा, और सुरीनाम से आया है पुमुस्तेरी की चटनी, और लव बोट यहाँ लगा है और खाना पक रहा है। मौसम तो बदल चुका है, बारिश हो चुका है, इसलिए पकाइए, रेड पुस को निकालिए, ब्लैक पुस को निकालिए, आप एक बोतल भी पी सकते हैं आज, क्योंकि वीकेंड हो चुका हमारे दोस्तों। और आप सब चुन है द एफग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से, हम चलाते हैं कुछ चुनमुन वाला गाना, हम भी चुनमुन करेंगे लेकिन बैठे बैठे।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, पगरी मिक्स और देखा जाए रोहित राइन म्यूजिक फरमासी दस्तार फ्रॉम सूरीनाम। हम फिर से ले चलते आप लोग के एक बार फिर से किधर, किरण केदार के तरफ, जहाँ पे कुछ चुनमुन वाले गाना है दोस्तों। जैसे मैंने कहा है, आप बैठे बैठे चुनमुन कर सकते हैं, अगर आप खाने को पका रहे पकाते भी चुनमुन करना, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। जी

ज्यादा सभी आप सुन रहे थे किरण केदार की आवाज। और मैंने कहा था शुक्रवार हो चुका है, वीकेंड हो चुका है, और जब घड़ी की तरफ देखा तो प्रसिद्ध हालफ एन हो चुका है, और हालफ एन के मतलब है हम चलते बिलफरवा से दिल। और रविंदर भोला सिंह की आवाज है, लाइरिक्स सिर्फ वो भी रविंदर भोला सिंह का है। चलो हम सुनते बिलफरवा से, तो क्या भाई यार बेफराव के रेस से छोड़ दे दोस्त, और चलो चुनमुन वाला गाना हम चलते हैं। आज वीकेंड थे फैन वीकेंड इधर रही।

वारे वारे वारे भाई रविंदर भोला सिंह क्या गाना गा दिया यार के बीर मनवा खाली आगे फूके उतर जैसे तावा पे बैठल रे रोटी के तो के रोटी के तावा पे बैठा दिले भैया ऐसे हो रहा है हर एक देश में सुरीनाम में काफी हो रहा है के बीर फरवा से दिल लगा ले सही हो रहा है ऐसे और होना नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है। दोस्तों आज शुक्रवार एक बार फिर से कहते हैं और कुछ चुनमुन वाला गाना हम चलाते हैं और अभी आप सुन रहे थे रविंदर भोला सिंह से उसने कहा कि बीर फरवा से दिल हम लगा ले ली बीर मनवा खाली आगे फूके फरकेत बोले से आगे फूके आगे खा है। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं दविंदर शिवनाथ अभी बीर फराव से आगे लगा ले इसे बीर फराव के साथ साथ वो भी आगे पे बैठ गया है क्योंकि सविता सिंह से उसके दिल लग गया है और गा दिया है मैं भौरा तू है फूल मिलके सुनते हैं

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं भौंरा तू है फूल, ये दिन मत भूल, जवानी फिर से लौट के आएगा, ये बात सच है या नहीं है मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम चलते एक बार फिर से, सवाल और जवाब अभी होगा 2 बजे से 3 बजे तक, सवाल और जवाब का जो हल सही हल देगा मैं उसके गाना ज़रूर सुनाऊंगा। अगर गलत हो चुका आज ही वीकेंड तो भी मैं आपके गाने को ज़रूर सुनाऊंगा। एक बार फिर से हम सवाल को पूछते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, दो कान हैं, एक कान से मत सुनना, दोनों कान से सुनना, तब बात समझ में आएगा ना, ऐसे बात है। ठीक है दोस्तों, अगर इंडिया में जन्म होते हैं बच्चे को तो कौन सा कॉलर दांत होता है, उसका दांत कौन कलर है, और कॉन्गो अफ्रीका में जब जन्म हुआ तो उसका दांत कौन सा कलर है, कौन सा कलर है। अगर आप सही जवाब देगा, सवाल पे सही हल देगा, आपका हक बनता है एक गाना मांगने के लिए। ये ही सवाल और जवाब 2 बजे से 3 बजे तक चलेगा दोस्तों। और एक बार फिर से पूछे है, अगर इंडिया में बच्चे जन्म लेता है कौन सा कलर दांत है उसका, और लीजिए अफ्रीका में बच्चे जन्म लेते हैं तो कौन सा कलर दांत है, कौन कलर दांत है, सही जवाब सही गाने को मांगना 2 बजे से 3 बजे तक। तब तक के लिए हम चलते उमरिया, घटती जाए रे देखा जाए दस्तार्स, म्यूजिक फरमासी दस्तार्स फ्रॉम जूरीनाम।

जी हाँ दोस्तों, चाहत को भूला मत देना, मुश्किल है बहुत मुश्किल। म्यूजिक फरमासी दस्तार फ्रॉम सूरीनाम, सिंगर रोहित छेदी। क्या आवाज, क्या अंदाज में गाया भाई, क्या अच्छा गाना, क्या अंदाज में, क्या आवाज में गाया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे, वक्त से हम जुड़े हैं और वक्त हम ऐसे जाने नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, क्रिस राम खेलावन के हम लाते हैं, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर हफ्ते इस गाने को घुमाते हैं। द न्यू सॉन्ग्स फ्रॉम क्रिस राम खेलावन 2026 का गाना है और हम सुनेंगे क्या अच्छा गाया है भाई क्रिस राम खेलावन ने। हम सब मिलकर सुनेंगे क्योंकि आप सब चुने द एपिक इन लव फोन हिंदुस्तानी पे रिश्तो और सुखवार है चुनमुन वाले गाना हम चलाएंगे और मुझे ये गाना बहुत पसंद है जो क्रिस राम खेलावन ने गाया है।

0: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं बाजल लागे पायलिया, क्रिश राम खिलावन की आवाज़ है और मुझे ये गाना बहुत अच्छी लगते है, इसलिए मैं हर हफ्ते इस गाने को आपके कानों तक पहुंचाता हूँ। ये है क्रिश राम खिलावन, अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों हम आपसे ये भी एक बार फिर से कहना चाहता है, प्रोग्राम बन चुका है, सजाग सुचा है और आप तक पहुँचाते हैं। एक बार फिर से हम सवाल करते हैं, इंडिया में अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका दांत जो है तंद कौन सा क्लियर है, कौन सा कलर है, और अगर वही बच्चा अफ्रीका में जन्म लिया तो उसका दांत का कलर कौन सा कलर है। ऐप कीजिए और गाने को मांग सकते हैं। तब तक हम चलेंगे लेकर आपको न्यूज और कुछ रेखलामों, उसके बाद हम आते बोले यूं गया यूं चला या आगे चला गया पीछे से मैं आ रहा हूं।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

जी हाँ दोस्तों, भोला बाबा हो मेरे मन की मत सुनना, अपने मन की करना। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे, वक्त से हम जुड़े हैं, वक्त कम पड़ जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं और मुझे काफ़ी लोग सच सही जवाब को दिया है। अभी हाल ऑफ ट्वेंटी से हम आप लोग की फरमाइश से शुरू करेंगे, तब तक के लिए हम चलते हैं कुछ रजीव की तरफ चलेंगे और मिलके सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे राजीव से क्या हुआ तेरा वादा, एक रीमिक्स है दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं केमली, केमली की तरफ। केमली बुधराम, पैगी शिव प्रसाद और नीरा हरि प्रसाद, चलो देखते हैं वो लोग क्या गाते हैं। 2026 का ये गीत है और काफ़ी अंदाज में सब गाया है, और ये है वेस्ट इंडीज बॉलीवुड म्यूजिक।

जी हाँ दोस्तों, किमली बुधराम पैगी शिव प्रसाद और नीरा हरी प्रसाद की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। ये शमा शमा है दिलदार का द वेस्ट इंडीज बॉलीवुड म्यूजिक अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो हम देखते ही एक क्वार्टर और बजा है, हाफ थ्री से हम चलाएंगे सवाल और जवाब का गीत, हम फरमाइश आप लोग की सुनाने वाले हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं दविंदर सिंह शिवनाथ की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र सिंह शिवनाथ गा रहा था। किसके लिए ये गाने को गाया है, हाँ आप लोग जानना चाहते हैं तो एक सवाल किया, चलो देखते हैं जवाब क्या है उसका। सविता सिंह

0: जी हाँ दोस्तों, सविता सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे क्या आवाज़, क्या अंदाज में गाया है वो प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे दविंदर शिवनाथ के लिए गा रहा था, सवाल पे जवाब दिया है दोस्तों। चलो एक आखिरी गाना हम और चलाएंगे और तब हम चलेंगे सवाल और जवाब। एक आखिरी गाना रशिका दिन दिहाल की आवाज़ में हम सुनाएंगे।
1: This one is special. You know what it is.

जी हाँ दोस्तों, रशिका दीनदयाल से भी आप सुन रहे थे चटनी नगमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था हमारा चुनमुन वाला गाना, चुनमुन वाला गीत। आज फ्राइडा है, फैन ऑफ वीकेंड हो चुका है, हर एक को फैन ऑफ वीकेंड, और इसलिए मैंने कुछ चुनमुन वाला गाना आप लोग के सुनाया था। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं जैसे प्रोग्राम को बनाया है, हम चलेंगे सवाल और जवाब। सवाल और जवाब देखा जाए, हमारे ऐप से निकाला गया है। हमारे गांव का, सुरीनाम का, मेर सौरक का राजन, राजन जो प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, और उसने ये सवाल पे लिखा है। देखा जाए, हम पढ़ के बताते हैं। राजन ने लिखा है कि देख बेबी, जब खबो हमारा सवाल था कि हिंदुस्तान में अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका दांत का कलर कौन सा है, कलर कौन सा है, और अफ्रीका में जब लड़के जन्म लेते हैं तो कौन सा कलर उसका दांत है। ठीक है, हम देते हैं इसका जवाब। आप तार पे अभी तक मुझे ऐप पे कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को हम प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे और आपको फरमाइशें पूरा करेंगे। यहाँ पे लिखा है बेबीज खबर सुंदर तंद शेफ। तब अब आप लोग क्या बोलते हैं, सच बात है या गलत है? इसका जो हल है, जो सवाल पे जवाब दिया, वो सच है या सच नहीं है, आप लोग क्या सोचते हैं? 10 सेकंड सोच के हम बताए लो। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। अगर आप ठीक से ये सवाल को सुनेंगे, अगर बच्चे इंडिया में जन्म लेते हैं तो उसका दांत का कलर कौन सी है, और अफ्रीका में जन्म लेते हैं तो कौन सा कलर है। अगर एक बच्चे जन्म लेते हैं तो दांत नहीं है उसके, सही जवाब है। भाई राजन, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, रतदम से सुनते हैं, और मेर सौरक का हम सब दोस्त है, संग बड़ा हुआ है। आज उसने प्रोग्राम को सही जवाब दिया है और मांग किया है, किशोर दा की आवाज़ में एक गाना, एक गीत मांगा है, और देखा जाए तब काफ़ी अच्छे गाना है, हम आपको सुनाते हैं। आपका फरमाइश, राजन सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है। आपका गाने हम आपके कानों तक पहुंचाते हैं और आपके घर तक पहुंचाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे रोतरदाम से राजन, जो हमारे गांव सूरीनाम मिर्सर का है और सही जवाब को दिया है। उसका गाने को मैंने उसके घर तक पहुंचा दिया। भाई राजन शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद का प्रोग्राम को सुनते हैं और हम लोग के पसंद करते चुनहे द एफगिन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वक्त नहीं, देखिए काफ़ी बात हम करते हैं भाई राजन, वक्त बहुत कम है, इसलिए हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। देखा जाए तब इपम्बरक से संतरा प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है। देखा जाए हमारा ऐप, मैं पढ़ के बताता हूँ, या बेबी वर्दन सौंदर तंदन खबोरन। ठीक बात है, अगर इंडिया में बच्चे जन्म लेते हैं तो कौन सा कलर उसका दांत है, और अफ्रीका में बच्चे पैदा होता है या जन्म लेते हैं तो उसे दांत नहीं होते है। सही जवाब है और इस गाने को मांग किया है एक बार अगर तू कह दे, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ है।

हैं। तो इसमें लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ थे, और देखा जाए वाटरगंजफेल से शानदार जी सही जवाब को दिया। प्रोग्राम को सुनते हैं और कहता है कि बेबी खबरों में सुंदर तंद सीखे, सही जवाब है शानदार जी आपका गाना मैंने आपके घर तक कानों तक पहुंचा दिया है, और वक्त नहीं लेकिन काफ़ी बात हम आपसे करते। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं तो देखा जाए महमूद रहीम बख्श जो है प्रोग्राम को सुनते हैं और वो भी सही जवाब को दिया है बेबीज खबर में सौंदर तांद, एक बेबी भी दांत से लेकर पैदा नहीं होता इस एज सौंदरिंग, कभी कभी हुआ है लेकिन एक मिलियार्ड पे एक मिलियन पे एगो कभी हो रहा हो जाता है कि एक दांत होता है बच्चे के, लेकिन नॉर्मल कभी बेबी खबर ना हो गए दांत से सौंदर तंद। महमूद जी भी हमारा कारो को टीम का एक बहुत ही बहुत बहुत ही बलांगराई हिस्सा है हमारा, और बहुत अच्छा गाते हैं हमारा कारो को टीम एक चेंज के साथ हमारा साथ देते हैं हर इतवार को हम लोग करते हैं इलम पास रात फैन पे तखीस पे एक बैंक पे आप सब आ सकते हैं सुन सकते हैं देख सकते हैं और वेलकम बटन हैप्पी ओके तमे अलस स्मोक लग कॉमन लंग्स इलम पास रात फैन पे तक है इस वे एक प्लेन पे। और हम इस गाने को भाई महमूद ने कहा भाई अनिल कुछ अपना तरफ से रख दे क्योंकि हमारा बुरतौर समा कभी मोई है। ठीक है हमने इस गाने को रखा है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का एक आवाज़ है और दिल की आवाज़ भी सुन इसका म्यूज़िक है ओ पे नयन ने इस म्यूज़िक को बजाया है और आवाज़ है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का। और जाते हैं भाई महमूद रहीम बख्श की तरफ, वो अपना नौकरी पे जहाँ वो काम करते हैं वहाँ से इस प्रोग्राम को सुनते हैं।

जी दोस्तों, ये वादा रहा साजना प्रोफेसर प्यारेलाल मूवी नीकम तीन एन तक का पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा भोसली की आवाज अभी आप सुन रहे थे। इसका लाइरिक्स जो लिखा है राजेंद्र कृष्ण। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रिनिया भाऊजी और प्यारे बिरबल के लिए, अपनी लवली के लिए मांग किया था, जो साथ साथ में वहाँ बैठा है और प्रोग्राम को सुना है। बहुत शुक्रिया रिनिया भाऊजी और भाई बिरबल, वो भी फाहुन का उम्र पर है, बहुत ही अच्छा उम्र पर है और वो भी कलाकार है, करो को फरमाते के साथ गा रहा है हमारा। और भूल मत जाना फाहुन रेडियो के भी एक फाहुन करो को फरमासी है, उनके साथ हम भी गाते हैं, काफ़ी अच्छा कलाकार है। अगले हफ्ते हम कुछ गीत बीरबल भाई के सुनाएंगे, तब तक के लिए हम माफी चाहते हैं भाई बीरबल और रिनिया भाऊजी। हम आगे चलते हैं लेकिन वक्त से जुड़े हैं, लेकिन काफी बातें करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं एक बार फिर से वातरेगंज फल, जहां से इंदर भी प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, सही जवाब को दिया है बेबी सुंदर तंद खबोर। ठीक है यार, हिंदुस्तानी भी बोल सके हैं कि बेबी कहाँ दांत रहे यार, वो लिख सके हैं, प्रॉब्लम नहीं है, खाली दांत से जुड़े रहे तो ठीक है। भाई इंद्र के प्रोग्राम को भी अच्छे लगते हैं, पसंद भी करते हैं और मांग क्या है, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, ए भाई पद और किशोरदा की आवाज़ ही। और देखा जाए प्रेम पुजारी है, फिल्म का नाम है देव अनंत, इसका जो गाने को बजाया, गाने को प्रोड्यूस किया है और म्यूजिक है एस दे बिरमन। लाइरिक से नीराज हम सुनाते हैं आपके घर तक, भाई आपके कहाँ तक, आप कहाँ बैठे हो वहाँ तक सुन सकते हैं प्रोग्राम को। शुक्रिया, धन्यवाद भाई इंदर।

0: जी हाँ दोस्तों, वाटर गस्पेल से इंदर भाई प्रोग्राम को सुनते हो, सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग क्या था आपके गाना मैंने आपके तक पहुंचा दिया, उसने ऐप पे लिख दिया। थैंक्स भाई, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स आप भी जो प्रोग्राम को सुनते हैं इंदर, ऐसे ही सुनते रहे ना और पसंद भी करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम घड़ी की तरफ देखा जाए तो दिलीप और तो यही हो चुका है और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। उसके बाद हम यूं गाया यूं आया,
1: हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0765 32 47 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan de Ramsoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
6: Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat hij regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: जी दोस्तों, अभी अब आप सुन रहे थे रेख लामो और न्यूज जो फोन पे देते हैं, अभी आप लोगों ने लाइव सुना है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सवाल जवाब, टाइम नहीं है इसलिए हम चलते हैं। देखा जाए तो इपम बरक से भाई रामोन रामोन रामोन प्रोग्राम को सुनते हैं, रामोन फ्रेंड, और पसंद भी करते हैं प्रोग्राम को और सही जवाब को दिया है, सही जवाब को दिया है। और मांग क्या है, मूवी पूरब और पश्चिम से, जहाँ पे सायरा बानू मनोज कुमार इस फिल्म में काम किया है, और कोई जब तुम्हारा हृदय छोड़ दे नहीं सैफन तक का ये मूवी है, और उसने सही जवाब को दिया, सही गाने को मांगा। भाई रमन, आप प्रोग्राम को सुनते बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रोग्राम अच्छी लगते हैं, आपने कहा अच्छे प्रोग्राम अच्छी लगते हैं। इपम बोरेक में इपम बोरेक से वो भी कारोका करते हैं, उसे भी एक कारोका ग्रुप है, एक कारोका टीम है, जो भी गाना चाहते हैं जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रामोन फिंक से। ठीक है, आपके नाम आपके घर तक हम गाने को पहुँचाते हैं इपम बोरेक तक।

जी हाँ दोस्तों, मूवी पूरब और पश्चिम जिसमें सायरा बानो मनोज कुमार ने काम किया, आवाज़ था मुकेश का। और ये चला गया ईपम वेरक जहाँ से रामन फेंग प्रोग्राम को सुनते हैं, रामन फेंग प्रोग्राम को सुनते हैं आप। आपका गाना मैंने पहुँचा दिया आप तक, और जैसे मैंने कहा था उसको भी एक कराओके थीम है, उसका लेजर है वो। आप लोग गाना गाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए भाई रामन फेंग्स। काफ़ी लोग जानते हैं वो ईपम वेरक में प्रोग्राम करते हैं, अब कहूँ दूसरी जगह पर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखा जाए तो रॉय मंगली जो हमारा तेक चेंस का मासी के एक सिंगर है और बहुत बढ़िया गाते हैं, और वो भी प्रोग्राम को हर दम सुनते हैं और सही जवाब को दिया है। बोले यार कभी कभी बेबी के दांत जमल है भाई, ले जमे है बैल मखबोर भरतना है। सही बात है। और मांग किया है मूवी लव इन शिमला निगम जी जस्त का, यू जिंदगी के रास्ते संवार दे जॉय मुखर्जी साधना। और देखा जाए दोस्तों पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ है, लाइरिक्स है राजेंद्रा कृष्ण का, और इकबाल कुरैशी के म्यूजिक है, उसे तो हम नहीं जानते हैं इकबाल कुरैशी, और फिल्म डायरेक्टर है एरका नायर। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं भाई रॉय मंगली के लिए जो घर पे प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते। आपका नाम, ये गाना है रॉय मंगली।

मगर भंवर में कश्तियां उतारते चले गए, उतारते चले गए यूं जिंदगी के रास्ते, संवारते चले गए, संवारते चले गए कदम कदम पे हम तुम्हें उतारते चले गए।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत जो चला गया है रॉय मंगली जो मांग क्या है मूवी लव इन शिमला नीकंदिन सस्त का है, ये जिंदगी के रास्ते संवार दे। क्या गाना मांगा यार, बहुत अच्छा गाना मांगा रॉय मंगली, और एक बहुत अच्छा कलाकार भी है, हमारा साथ देते हर इतवार को हमारा साथ देता है। सुरीनाम वाकद अक्सई का है, इसके घर पे मैंने काफ़ी दिन ठहरा था, वहाँ से मैं गाना गा रहा था। भाई से बड़ा है ये मेरा, भाई से बड़ा है रॉय मंगली, ठीक है आपका नाम, ये गाना चला गया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सुरीनाम में पोस्ट क्रोनिंगन से, सीताजी प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है एजेंडी से बेबी बेगदांक के खबर होवे। जी हाँ सीता, ठीक ही कहाँ है, ठीक ही कहाँ है, और पोस्ट क्रोनिंगन सुरीनाम से एकदम से प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आप सुनते हैं, और देखा जाए और गाना को मांग क्या है तेरी दुनिया से होके मजबूर। पपीता पापी लेकिन सैफन तक का है, और मांग किया जिसमें का जिस आवाज है किशोर कुमार का आवाज है, और ठीक है दोस्तों हम सुनाते हैं और चलते हैं जूरीनाम पोस्ट क्रोनिंगन सरामाका से। सीता जी आपका गाना आ रहा है।

जी हाँ दोस्तों, पोस्ट क्रोनिकल शर्मा का सुरीनाम से सीता जी सही जवाब को दिया है। प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग क्या था तेरी दुनिया से होके मजबूर, पवित्र पापी मूवी और नेगेटिव सीवन तक का, जिसमें बल्लासामी बलराज सामी और तनुजा ने काम किया है। इसका जो म्यूजिक है प्रेम धवन ने बजाया है, सजा करके पहुंचाया है और लाइरिक से हाथ कलम स्याही चलाया गया है, वो भी प्रेम धवन है। ठीक है दोस्तों, ये था शर्मा का पोस्क्रोनिया से सीता जी का। चलो दोस्तों, हमारा बगल में इस वक्त जैसे मैंने कहा था, जल्द से जल्द आप रेडियो पे भी सुनेंगे लाल रसोगा अब कुछ सीख रहा है और जल्द से जल्द वो प्रोग्राम को करेंगे। जल्द से जल्द नहीं, एक दो महीना लगेगा, लाल रसोगा भी फाहुन का एक उम्र पर रहेगा और हमारे बगल में बैठ के सही जवाब को दे दिया है और मांग किया है फिल्म से मूवी लव इन शिमला नेगेटिव जस्ट का, या लिखल सॉन्ग्स लव का मतलब क्या है, लव का मतलब क्या है, ये मेरा अगली सवाल है। मंगलवार के लिए एक सवाल मैंने कर दिया है, लव का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, जिस फिल्म में जॉय मुखर्जी और साधना ने काम किया है और देखा जाए इसका म्यूजिक भी लाइरिक्स भी राजेंद्र कृष्ण है और म्यूजिक इकबाल कुरसी का है। ठीक है भाई लाल, हमारा बगल में बैठा है और मुझे ऐप किया है कि एक बच्चा जो जन्म लेते हैं तो उसे दांत नहीं होते हैं, जिस कॉलर कुंचिबा एक को कॉलर ना है। ठीक है भाई, हमारे बगल में बैठा ले, सब चीज़ देख रहा है, सीख रहा है, बहुत खुशी की बात है।

जी हाँ दोस्तों, दर पे आए है कसम ले, मुकेश की आवाज है और मैंने पेश किया है इस गाने को भाई लाल रसोगा ने सही जवाब को दिया और सही सॉन्ग्स को मांगा है, नाम कर दिया है भाई रसोगा हमारे बगल में बैठे, आप जानते हैं लाल रसोगा जल्द से जल्द एक महीने दो महीने में हमारा साथ उम्र पर हो जाएगी, फोन के ये सीख रहा है अभी, आज से शुरुआत किया है, हमारे बगल में है और सही जवाब को दिया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं जहाँ से भाई आंद्रेई प्रोग्राम को हर हफ्ते सुनते हैं, पसंद भी करते हैं और हर सही जवाब को भी दिया है और हमारा एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है, टेक अ चांस कर को फार्मेसी का एक बहुत भी बढ़िया कलाकार है और सही जवाब को दिया है बेबी मैं सौंदर तंद के कॉलर नहीं है। ठीक है, और मांग किया है मैंने एक गाने को रखा है भाई अंदर आप सुन रहे हैं, अगर गाने सही नहीं है तो मुझसे कहना, हम मैं खोज रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यही गाना है लेकिन सही नहीं है तो मुझसे ज़रूर कहना, किस लिए रुका है ये मैंने पाया है अशोक कुमार, इस वेले में काम किया है मधुबाला और देखा जाए हाँ महमूद अभी काम किया है इसमें और या ठीक है हम आपको सुनाते हैं, अगर ये गाना सही नहीं है तो मुझसे ऐप पे कहना तो मैं सही वाला खोजता हूँ, खोज मैंने खोजा लेकिन सोचता हूँ यही गाना है भाई अंद्रेई।

जहाँ दोस्तों किसके लिए रुकेगा और किसके लिए रुका है, क्या गाना है, क्या गाना है भाई भाई अंद्रे, आप सदा ऐसे से गाने मांगते हैं कि जी खुश हो जाते हैं, और बहुत अच्छा गाना को मांग किया है दोस्तों। ठीक ठीक है भाई अंद्रे, सदा ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना और बहुत ही अच्छा लगता है। आप गाने मांगते हैं तब दर्द भरी गाने को मांगते हैं, और ये सब गाना आपका समय का है और मैं जानता हूँ बहुत बढ़िया गाना है। और भाई अंद्रे जो है लोग सुन रहा है, सुनने को चाहिए कि बहुत अच्छा कलाकार भी है हमारे साथ, हर इतवार को हमारे साथ गा रहा है और एक बहुत अच्छा कलाकार भी है, बड़ा भाई है हमारा और सदा बड़ा भाईगत रहेगा, वही इज्जत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं भाई। ठीक है, हम चलेंगे आगे क्योंकि फिर से कहेंगे हलफदरी हो चुका है, 3 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, उसके बाद हमारा कोलेगा राजन द्वारका प्रोग्राम को करेगा लाइव, सुनते रहना, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है उनको। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं वेलखदक से गुलाम नबी वैक से, जहाँ से गीता प्रोग्राम को सुनते हैं, गीता का श्रीराम जो मीर सरख का भी है जहाँ से हम आए हैं, लेकिन वो वैकदाक से ही में रहता है गुलाम नबी वैक से। सही जवाब को दिया है, सही जवाब सही गाने को मांग किया है, देखा जाए। सुनो ना सुनो ना मूवी चलते चलते अभिजीत अलका याग्निक का आवाज़ है, तफेत अल्तार के लायरिक्स है और देखा जाए म्यूजिक है आदेश। चलो हम आपका नाम करते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं और प्रोग्राम ऐसे ही सुनते रहना। गीता आप बाल बनाते हैं, बाल काला करते हैं, हर एक चीज़ वो कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए नबी वैक, गुलाम नबी वैक वेलखदाक्षे में, वो बाल काटे बाल को बनाते हैं और जल्द से जल्द होलन भी आएगा घूमने के लिए, ज़रूर हमारा स्टूडियो में आना, थोड़ा से आपको मैं इंटरव्यू करूँगा कैसे आप बाल को बनाते, कैसे बाल को काटते हैं, यहाँ भी बाल काटना बाल बनाना, ठीक है।

0: जी हाँ दोस्तों, वक्त आप सही गुलाम नबी वैक से, जहाँ से गीता का सलाम प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते सही जवाब को दिया था। और अभिजीत अलकैगनी का ये गाना मांग क्या था, सुनोना सुनोना सुनोना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गीता, आप प्रोग्राम को सुनते ऐसे सुनते रहना सदा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सुरीनाम तिटली फोकना से, जहाँ से सुनीता बुधाई इस वक्त सुरीनाम में है और प्रोग्राम को सुनते ही सही जवाब को दिया है और मांग किया है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। किशोर कुमार की आवाज़ है, अमर प्रेम है मूवी, जिसमें रेस खन्ना शर्मिला टैगोर ने काम किया है, आनंद बख्शी का लिरिक्स है और देखा जाए म्यूजिक है एरदी बर्मन। प्रेम कहानी निकलती ट्रेन से इवन तक कहे, काफ़ी हलचल मचा रखा था ये मूवी जब आया था, इसलिए कि ये गाना उस फिल्म में थे और रेस खन्ना ने काम किया है। चलो सुनीता जी सही जवाब को दिया है, सही गाने को मांगा है, हम आपके गाने ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए,

0: जी हाँ दोस्तों, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर कुमार का बास था और देखा जाए अमर प्रेम का मूवी म्यूजिक अमर प्रेम। इसका नशा मिला टैगोर ने इसमें काम किया है और नेकदिन सेवन तक का है जिसमें म्यूजिक भी आ गया है एरदे बर्मन और लाइरिक से आनंद बख्शी का। ठीक है दोस्तों, हमारा कोलेखा राजन द्वारका इस वक्त स्टूडियो में आ चुका है। एक गाने के बाद हम न्यूज़ रखेंगे और न्यूज़ और रिक्लाम, उसके बाद राजन द्वारका हमारे को लिखा है भाई है इस प्रोग्राम को लाइव करेगा। सुनते रहना, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है राजन द्वारका का। तब तक के लिए हम एक सवाल करते हैं जो आप लोगों इसके सवाल पे जवाब आप जानते हैं, सवाल और जवाब हमारा प्रोग्राम है। और देखा जाए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी सवाल है, तो मुझसे सुनिए भाई। एगो चीज है जो तोर है वो तोर बा, बाकी दूसर कोई खबर एक करे है। कौन चीज बा जो तोर है वो दूसर कोई खबर एक करे है, तू ना खबर एक करे भग दूसर को कोई खबर एक करे, तोर बा तू ना खबर एक करे और दूसर कोई खबर एक करे है। एक सवाल का जवाब मुझे देना तो गाना मांग सकते हैं, मंगलवार के एमपी रहेंगे दोस्तों। अभी हम आपसे बात करेंगे, सॉरी हमारे तरफ से, हमारा पूरा टीम के तरफ से, सेलेब डायरेक्टर कुमार घिराव के तरफ से ये गाना जो मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, पूरा टीम के तरफ से आपका नाम है। देखा जाए मूवी साथी है और मुकेश कावा से कल्याण, मुकेश सुल्तान कल्याणपुरी के, हरेंद्र कुमार और मीना कुमारी ने इसमें काम किया। दोस्तों मिल के सुनते हैं, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है, लाइरिक से मजदूर सुल्तानपुरी, म्यूजिक है नौसाद का।
1: दो हफ्ते
2: अब भी बताना होगा क्या जी चाहता है।

जदसो ये गाना था नाम से ही लतीम फन फाहुन, हर एक जो फाहुन का है सब हमारा कोलीखा और हमारा डायरेक्टर जो है सभी के सभी अपनी तरफ से आप सब सुनने वालों के लिए इस गाने को मैंने सुनाया है। ये गाना चला गया आप सभी के नाम और नामस हे लतीम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का दोस्तों। और एक गाना और है जो आप लोग के नाम हम करते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ और रिक्लाम चलाएंगे, उसके बाद हम विदाई जरूर लेंगे आपसे।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया है मूवी गुद्दी, लेकिन इन फैंसेस्ट का है पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज, और देखा जाए शैलेंद्र का लायरिक से देव बिरमन का म्यूजिक है। ये दो गाने नामज फहन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आप सबके लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम हर एक को सलाम करते हैं, नमस्कार कहते हैं, और फिर मिलेंगे मंगलवार को। आप लोग अच्छे से रहना, ख्याल करना, समझ के हर एक चीज़ करना, भूल मत जाना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जुमा है, आज शुक्रवार है, जाइए और अपना नमाज को पढ़िए और जाइए मंदिर, हर एक मंदिर आज खुला है, खाना मिलते, सभी कुछ मिलते, जाइए देखिए श्री कृष्ण जन्म के कैसे लोग कहते हैं, कैसे ओके मनाते हैं, झूला भी झूलेंगे, हर एक चीज़ होगा आज मंदिर में। आप लोग संभल के रहना, बच के रहना, फिर मिलेंगे मंगलवार को। आने और जाने के वक्त भी होते हैं, यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, हर एक को हमारा राम राम और सलाम। यहाँ से न्यूज़ और बयान हम रख देते हैं।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

जो सभी चंद के बाद न्यूज़ बुलेटिन आप सुनेंगे श्रीमान रोमियो होस्ट के जरिए, और चार और साढ़े चार के बीच मिले जुले गीतों के साथ आपका दिन बहलाऊंगा। साढ़े चार पाँच के अंदर आइटम बयान जो है आज शाम को वो है दिल। हर एक गीत जो दिल से शुरू होता है लगभग आधे घंटे तक हम आपके लिए पेश करूंगा। प्रोग्राम को सुनते रहना, वो छः बजे के बाद मिस्टर चौनी नंबर वन का प्रोग्राम आप सुनते रहना।

हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 से 5 2 2 4 0 हमारा तार का नंबर है। दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जितने लोग हर एक जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं सभी को फाहुन के फुल टीम की ओर से बहुत से बधाई हो। एक कृष्ण भजन चलेगा प्रोग्राम में।

बजकर 4 मिनट बीत गया है। फिर मिनटन ओफर फिर आपका हैप्पी स्टेशन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। अब से लेकर 4 बजे लोग मिले जुले गीतों के साथ आपका रिल बहलाऊगा। उसके बाद 4:30 और 5 के अंदर आइटम बयान जो रहेगा शाम को, वह दिल, हर गीत जो दिल से शुरू होता है लगभग आधे घंटे तक आपके लिए मैं पेश करूँगा। तो कहीं मत जाइए, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर चुन रही है।

कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है। उदित नारायण एंड कविता कृष्णा मूर्ति दोनों की मीठी आवाजों में ये सॉन्ग अभी चला। श्रेया घोषाल तैयार हो गया है दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक दो फिल बरिस्त प्रोग्राम में चलेगा और फिल है सोकोपा इन आम्स्टरडाम अपर दोरन टू अमर्सफोर्ट नॉर्थ एंड फोर्थ हाइट 12 किलोमीटर Atwe Eindhoven, Utrecht tussen Afrit Sertogenbosch West en Waardenburg 19 kilometer. A12 op de A12 Utrecht, Sertogenbosch tussen Vianen en Kolmborg 7 kilometer. A12 Utrecht, A12 van het A12 tegen A2 dus zo. Abhi A2 verhaling afgezien. A2 Utrecht Sertogenbosch tussen Kolmborg en Zandbommel 16 kilometer. और फिर देखता हूं अब द एसेस से पहले आफिर पर एक दो फील है दोस्तों। आम्स्टरडाम डेन हाग ऑफ द आफिर आम्स्टरडाम डेन हाग टू क्नोपेन द हुक एंड क्नोपेन बर्गरफेन 6 किलोमीटर। आफिर आम्स्टरडाम डेन हाग टू होकमार एंड क्नोपेन हॉफलीट 4 किलोमीटर। ऑफ द आफिर रोटरडाम अंटवर्पन टू आफ्रेट टोलन एंड बर्गन ऑफ सोन 5 किलोमीटर। ऑफ द A9 आम्स्टरफेन अलकमार टू बीवरवेक ओस्ट एंड अकरस्लोट 5 किलोमीटर। और फिले है इस वक्त ऑफ द आ

तू मत करना, एक मिनट बीत गया है सर 4 बजकर। आइटम को शुरुआत में करूंगा दोस्तों। आज शाम का आइटम है दिल, हर गीत जो दिल से शुरू होता है लगभग 8-1 घंटे तक आपके लिए मैं पेश करूंगा। आपको सिर्फ तार करना है न्यूल सीफन तक दृश्यास 5 2 8 2 8 4 सीफ या न्यूल सीफन तक दृश्यास 2 2 8 0 7 सीफ पर आप तार कीजिए। एक गीत आपके नाम है जरूर से रख दूंगा। हेंगलो में रहता है श्रीमान या परिवार अभिनंदन, यानी कि चांदर अभिनंदन, साथ ही साथ उनका जीवन साथी नैली, सभी परिवार वहाँ पर रहते हैं और चांदर की ओर से बड़े प्यार और दुलार के साथ जीवन साथी नैली के लिए ये सॉन्ग।

0: ऐसी ही
1: दिल से मिलाकर देखो, नजरों में छुपा कर देखो। हैंगलो के रहने वाला श्रीमान चांदर रघुनंदन की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए। श्रीमान आंद्रे राजकुमार भी प्रोग्राम को सुन रहा है, और आंद्रे के लिए या आंद्रे का चॉइस जो है शाम को, वो है ये गीत।

लेवार देख के रहने वाले श्रीमान अंद्रे राजकुमार के लिए सॉन्ग पेश था। फावन हिंसा युग पर आप चुन है, प्रोग्राम गीतों का संगम चल रहा है और आइटम आज शाम का जो है वो है दिल, और दिल के आइटम में भाग लिए है रेस वेक के रहने वाली आशा। आशा के लिए दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, पद्मश्री मोहम्मद रफी एंड हेमलता।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, रईस वेक में रहती है आशा और आशा के लिए स्पेशल ये सॉन्ग पेश था। ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दिल ने कहा दिल से, दिल ने दिल से क्या कहा, हम सब मिलकर सुनेंगे मून जी बोध की तरफ से माला के लिए।

भगवान मून जी बोध की तरफ से जीवन साथी माला के लिए सॉन्ग पेश था। फाह हिंदुस्तान रेडियो का शाम का प्रोग्राम है गीतों का संगम स्पोर्ट बरेस्ते दोस्तों। एडीसी का जो ट्रांसफर या फीफा का ट्रांसफर पीरियड खत्म हो गया है, फिर भी आज शुक्रवार है तो एडीसी में फुटबॉल का मुकाबला है स्पार्टा रोटरडम पैक्सोल। कल जो शनिवार है तो एनएसए फेयनोर्ड, एफसी यूट्रेक्ट गो अहेड ईगल्स, आयाक्स पीएसवी, विलेंटवे एक्सेलसियर सोंडा। रविवार को एफसी ग्रोनिंगन, एफसी ट्वेंटे, एफसी हेरेनवेन एसेट, टेलस्टार एससी गंभीर और आखिर में आरू डेनहाग फॉर्टुना सितार से मुकाबला करेगा। तेसो स्थान एरेडिविजी में नंबर एक तो नंबर सेस। नंबर एक पर है एसेट एट फिर वेस्टर एट फिर वेस्टर 12 पॉइंट, पीएसवी एट फिर वेस्टर 10 पॉइंट। नंबर दो पर है नंबर थ्री फेयनोर्ड एट फिर वेस्टर 8 पॉइंट, आयाक्स ऑफ द फिफ्थ प्लेक एट थ्री वेस्टर 7 पॉइंट। नंबर फाइव पर है गो अहेड ईगल्स met 7 punten. Nummer 6 per het Fortuna Sittard uit 4 wedstrijden ook 7 punten. Of Sunaan is met het Caribbean Cup kan mukabla. Ab jante het Brokki, jo waka voetbalvereniging hai. Pahla wedstrijd Delfines se wo 1-2 se haar gaya. Aur BTV budhwar ko wo 23 wese ghar par khela hai. Aur ye wedstrijd 0-0 mein end hua. Dus Brokki is uitgeschakeld uit de Caribbean Cup. यह तरह छोटा सा स्पोर्ट बरक्त दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया का टाइटल सॉन्ग

आपको मालूम होना चाहिए हॉलैंडिस का सबसे बड़ा बाजार जो है हाथ से मार खुला हुआ है। अगर आप बाजार जाना चाहते हो या बाजार पे चल रहे हो गए तो वो भी होना चाहिए, लेकिन जो एक डोमो है सारा संभाल के रखना, इसलिए कि बाजार पे बहुत से सैकर रोलर्स या लुटेरे लोग घूमता रहता है। मिस्टर जॉनी नंबर वन आ गया सीरियल में भी 6 बजे एक बार अपने प्रोग्राम पेश करेगा।

बस प्यार करके देखो ना, हर एक काम जो आपको रेडियो के सिर कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 से 1 तक, 3 से 5 2 2, फिर 0 हमारा तार का नंबर है। बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम दोस्तों। आज सुबह से देनहाग शहर में बारिश हो रहा है, हम कहते हैं मौत्रीखन, तो मौत्रीखन को कॉम्बिनेशन में नॉर्मल रीखन एक इन वर्ड में हम कह दिया है दोस्तों, जिस कभी कभी जोर तोर से बारिश होता है और कभी कभी झीसी जैसे हम कहते हैं उस तरह से रहता है, फिर भी बरसात का मौसम है। और बरसात के मौसम में ये सॉन्ग जरूर चलेगा।

जब शुक्रवार है दोस्तों, तो बहुत से जगह जोर तोर से हवा चला है और अल्फन अंदरैन का जो वेंकल क्षेत्र है वहाँ का फसंस रात में एक बोम एक पेड़ तैन में से एक पेड़ टूट गया है और जाकर कपार के मूत्र कार के दाग पर गिरा है। ढेर से स्कार हुआ है और ताकल हो के एक मूत्र कार ले गया है पुलिस से। एक दूसरा संग मैं तैयार कर रखा हूँ, अब की बार दिल परदेसी हो गया। ये दिल क्या हो गया कि परदेसी हो गया? दोस्तों, परदेसी से सारा बच के रहना। परदेसी आते हैं, मुस्कुराते हैं, बातचीत करते हैं, फिर भी एक दिन चला जाता है।

दोस्तों बीरकाड़ और जुनू बीरकाड़ जो नाक शहर में है वहाँ पर जो काफ़ी से ईट है सेंसो, तो वहाँ का जो बसुकर से उन्हें बहुत कफार, इसलिए कि लोग मोटर कार वहाँ जोर से चलाते हैं और काफ़ी के एकदम सताए के वहाँ से पास होते हैं। तो वेथ हॉर्डर द मोस गया वहाँ पर और छानबीन किया, कहा है कि वो कोशिश करेगा वहाँ पर मोटर कार का पैर कैंग से कि बहुत कम मोटर कार वहाँ चले या मिनाही हो जाएगा कि वो मोटर कार से अब द बीर कार और आउट बीर कार जब आप नहीं चला सकते हैं। इस कफार फॉर द बसुकर्स तुमसा कोई प्यारा मिस्टर सानू एंड अलका। From the movie Godard, 1994 में जो रिलीज हुआ।

दोस्तों दोस्तों दोस्तों, वक्त वक्त वक्त वक्त को हम जीत नहीं सकते, वक्त को हम जीत नहीं सकते, वक्त से सिर्फ सीख सकते हैं।

दैया दैया रे, वक्त वक्त वक्त वक्त वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने को, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने को।

ठीक है, हैप्पी स्टेशन फा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। छह बजे एक बार मिस्टर जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम सुनते रहना।

Noordwijk. Noordwijk per jo 50 meter hoge ruiserat hai, wo ab wahan se hata jayega. दोस्तों पता नहीं क्यों हटाया जाएगा लेकिन लिखा गया है कि ये रिसरात है फरप्लास होगा वो जाएगा पोर्तिखाल पोर्तुगी से हो पोर्टो में वहाँ पर जाकर फिर से ए मकार या फिर से रखा जाएगा तो स्ट्रांस नोर्थ वेक का जो जो रिसन रात है आप जानते हैं एक ऊंचा सकारा सेल हम लोग कहते हैं 50 मीटर का तो वहाँ से अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है।

पांच पांच बड़े ओली मस्कपे जो नीदरलैंड शहर में है, जैसे कि शेल, बीपी, टोटल एनर्जीज, टेक्सास और एसो, ये सब मिल के बातचीत किया है और फैसला किया है कि ये लंदलक का 38 प्राइस जो रहेगा बेंसिने का एक रिकॉर्ड दोस्तों, और वो है 2 €C/100 €5 तक, और 18 का दाम रहेगा 2 €C/100, और जो आगे चलकर डीजल का प्राइस रहेगा 2 €68/100, ये एक रिकॉर्ड होता है दोस्तों प्राइस का। पता ना क्यों ये प्राइस इतना ऊंचा पे चला गया, फिर भी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वास्तव में ये प्राइस 2 €C/100 तक रहता है या नहीं। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे कि देखता ही रहूं।

ही करे देखता हूँ बातचीत रह गया है 6 बजने में दोस्तों, 3 बजे से आपका सेवा किया यही आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हर एक जो प्रोग्राम को सुना या प्रोग्राम में तार किया उसको मैं बहुत धन्यवाद या शुक्रिया कहता हूँ। वीकेंड है आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेशो। आने वाला शुक्रवार शाम में 3 बजे एक बार फिर मैं प्रोग्राम गीतों का संगम के साथ स्टूडियो में उपस्थित रहूँगा। हिंदुस्तान रेडियो पर चुन रही अभी मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम चलेगा। खुशबू रहेगा तब फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा तब फिर मिलेगा। आप सभी को एक सुहानी रात।

लाना जाने ऊंच नीच कलाना जाने जान सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद दे। तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्त आज है शुक्रवार, शाम को 6 बज चुका है, फिर सितंबर हो चुका है दोस्तों। और आज हम फेसबुक के माध्यम से लाइव नहीं है, कुछ कारण बस मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉकेड हो गया दोस्तों। Dus binnenkort ga ik een nieuwe Facebook maken. Dan ga ik weer namelijk live zijn. Maar hier se abhi aap loon hamara collega Sati Rajan Dwarka se program ko suna hai. Aur yahan se desh-videsh ke samachar hamara aap loon yahan se sunenge.

तो दोस्तों, इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में। सबसे पहले जितने लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, सबको तहे दिल से यानी कि बहुत बहुत बधाइयां हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम रमे रमे। और सबको, जितने लोग मंदिर को गए हैं, आप सबको एक बहुत बहुत धन्यवाद है जो मंदिर में आपको आप गए हैं। हम तो रेडियो पे है दोस्तों, इस बार हम नहीं जा पाएंगे, फिर भी आप सबको एक बहुत बहुत बधाइयां हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर।

हम तुरंत तुरंत तुरंत जानते हैं सूरीनाम के ओर भैया नहीं खनन दर्तक यारक एक अनमन इस इन गस्लोतन फॉर स्टेल्सल मातक में सांदन इन कॉन्क्यूबिने वहां पर बाप ओके बिचारा के बन हुई गया रहा एक औरत है अन फ्राउ इन मेरसोर और उबहीव बै बीरन हेल्प मांगी सेगा सिपाही लगे शिकायत करी सेगा कि ओकर घर में एठार वोनिंग वेस्ट ऑन स्नापन बोले को नहीं दर तक यार के कॉन्क्यूबेन बेस बा वर्ड इरफान फरदाग हर स्टेल्सलमातक ते हैबन मिसंदल हर मोबाइल टेलीफोन ते हैबन खपाक एंड हर इन हाउस हैबन अफगस्लोटन ओके घर में औरतिया के मारत रहा भैया और जहलनेस ओके घर में ताला कर देवत रहा सनिचर की नहीं अगस्त के बात है अन इट लिख ना दैट द पुलिस अन मेल्डिंग करी दैट अ स्लाखटोफर फ्रॉम मिसंदलिंग सिख ऑफ एन एड्रेस इन द रिसॉर्ट बफोंड De vrouw haar had woning weten te verlaten en was naar de buren gegaan om hulp te zoeken. De konore kwam op een garme zee bichari nikerke. Or buren lege geil het de hulp aanvraag kreise. Bolle volgens het voorlopige onderzoek beschuldigde verdachte zijn concubine ervan dat zij overspel zou hebben gepleegd met een vriend aan wie hij ongeveer een week eerder onder dak had geboden. De vrouw ontkende die beschuldiging or diabole iets. चीज ना हो सके है और उकर कॉन्क्यूबिना जो रहा भैया बोले है का कोनो दूसर से एक लफड़ा रहा तो एक बारे में सिपाही जो रहा पुलिस रिहो ओ सूरीनाम के और बोले गैल है फॉर फोकस टेलसन मातक सो हेवन में सांदल अब इन मोमेंट सो है ओ खार टेलीफोन हेवन आपको पाक में से ये अच्छा बात ना है अनखिफ्त भैल है और बोले फरदाख तो नौक सेल्फ द आफन रुके से हम पकड़ ले सेगा जो बोले नशान भूत रहा भैया onder een alcohol en verkeren hulp officieren ook een pakkerke bankeris een vrouw kreeg een medische verklaring op haar naam en werd voor behandeling doorverwezen naar de plaatselijke artsmensen te ibahuduke want he ki i kam karise de mia pakkerke bankele raha aur dekho bhaiya ek brown fitzer bhaiya ek brown fitzer hai bole hai ga aa rahi din karise aur jai ke gotro mein ghus gaya bhaiya balant in an khout दुख के बात ही भी है दोनों के बात है एगो मैं से टू व्हीलर में को प्रॉफिट रहा मेर फेल वेक में और एगो ओ तो अराइडिंग करके जाई के घुस के एम्बुलेंस बेचारा के लेंगे नेचुरली सिकन है समझाते हैं डीएनवी के बारे में वास्क्यू करे सर नाम के फेल से ड्रैगन हरकेन फॉर दैट द क्राइसिस आउटब्रेक डीएनवी तो जाने कौन ची भैया डीएनवी के मतलब जाने हैं उस फेल खैद के हैगा डायरेक्टरेट नेशनल फेल खैद के आदमी है is juist een proactieve werkwijze nodig waarbij risicovoertuigen vroegtijdig worden herkend en informatie tussen veiligheidsorganisaties beter wordt gedeeld. Dus Sipahi is een directoraat nationale veiligheid gewijze. Zat is aan het he, dosto uitgang staat centraal tijdens de Nationale Veiligheidsconferentie ke 10 tarik of 4 tarik september me congres hal me se bane ekar bare me banchit kalera minister bhi wahan paiga van justitie en politie aur hem de kil VIP bhi wahan pe ba aur communicatie dienst bhi wahan hai conferentie pe bole hega het onder meer om criminaliteit transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie, bolle kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid en zekerheid. Kebane mensen van hoe baatjeet kerise jenta. Hanis manorat hoe minister van justitie en politie kenha. Bolle hega verwacht kere ki bijeenkomst. Bolle hega overleg blijft. O bolle hega waarnemer die NV directeur John hega majoor Gerard Kalka stelde de veiligheid van het land alleen effectief kan worden beschermd, moeten wanneer betrokken instanties dreigende eerder signaleren en gezamenlijke handeling. Toen je baan tegen de NV gebaren mee, hebben we de jantaan zo aanplukken en betaalde hen. Op de kop van ja, ik 75 jaar keer.
75 यार के गाड़ी चलावत रहा भैया, और जाए के वो 17 बरिस के लुंडा के ओतो से मारी से लड़कवा मर गए है भैया। 75 यार के रमिया रहा 17 बरिस के गो लुंडा पर फिर चलावत रहा। बोले ऑटोमोबिलिस बतरोकन बाद में आज रही दे फन हो को हिस्ट्रा 70 यार खबर फिर से बेचारा मर गए बड़ी दुख के बात है इन डर तक खिस्टस के। और बोले ब्रॉम फिस्टर हो फन हो कस तरह से उजात रहा मूलन पात पे नर्द हाफन लान जात रहा। और ये रमिया गैल है और बोले एक ऑफ दैट मोमेंट में से ऑटो खपर केर और फिर बैरम रहा जैसे द ब्रॉम फिस्ट पात एंड ऑटो पात के बीचों में परकेर कर ले रहा। और जब ब्रॉम फिस्ट हुआ अब जात रहा द ऑटो देख वास बखना द री द ऑटोमोबिल इज वेग ओम अन इट फरकेर देल त नहीं मन वो घुसल जाए के ऑटो वाले के मांगे फरकेर वाम जाए जो ब्रॉम फिस्ट हुआ के और ऑटो बनवा के बीचों में परकेर कर ले रहा। फोलकस श्रीनाम से पुलिसी फरलीन ने बस्तुरा दरबे खीन फोरा अन एल ओवर का फरकेर है मांगते अन बोख ना रेक्स में द बदुलिंग फिया द दोरब्राग द वेस्टलक रेबान ते बरेकन दरबे ऑन स्टोंड द अंडररेडिंग में द ब्रॉम्फिस और बेचारा मर गए है 17 बरिस के। आंचे नी ओपले द खाद दे सोर दिंग्स गबेरे मेंसे तो ये बड़ी दुख के बात है। अब देखो एगो 24 बरिस के औरत भैया ओकर ओके कितना छुड़ी मारी से सबन फिरन त्वेंद किया रखा मन स्टेक एगो फिरन त्वेंद किया रखा आदमी अपन फ्रिंद के फ्रिंदेन के छुड़ी से बहुत भोंकी से नानी ब्रोको पोंदो के बांधे। और ब्रोको पोंदो में एगो दोरपू के नाम बा द्रिपदा झगड़ा भैले भैया अंदरिशि ओवर सेक्स इन ए दौर एट खोलो पर एरस्त जहाँ यरमिया पर द्रियन तो रख यार का फ्रेंडिंग के और छोड़ी से बड़ा भोकाई भोकी से 27 तारीख ऑक्टोबर के बात है हमारे नानी। तो ये भी तो दुख के बात है दोस्तों। सिपाही पकड़ के ले गए हैं और बोले फोर वेयर भी मिल गए हैगा अकादीमी में फिर तो रख यार का रमिया के पकड़ के बन भे ना पतावे हैं कि काहे के झगड़वा सेक्स के ऊपर भैल है बाकी वेल लिखल ओवर सेक्स इज दिस कमिटमेंट से। तो ये मांत है सुरीनाम देश ब्रो को पुंदो के खदेती नेर द भैया फिंदन क्लोइस टाइड स्कोर मार्क वर्कसाम है खदेती नेर द जोन जहलियों ने भैया स्कोर मार्क करत रहा कहाँ पे वेख ना रही बैरक में हूँ आप सब ने गो क्लोइस पाई से जहलीवन पाई से भैया और काम करते में पाई से जहाँ पे सिपीर लोन भी अनवेशक रहा। और बताए गए क्लोइसवा में 5x5 सेंटीमीटर के उतरा बड़का रहा द क्लोइस फरतून खींच से बार स्पोरन फॉर फॉरसेरिंग इस फॉर आल्स नॉक नीट का ओपन कहानी खाली है ना रहा भैया लेकिन कलांटी में लिखाई गए हैं कि एगो क्लोइस मिलल है हमारे जनता। तो जो क्लोइस मिलल मिल नहीं सक कि उमा उमा पैसा रहा कटलिस के कटौल भैल है नानी कटलिस के कटौल भैले नीखन 3 यारख फरदख्त एगो नीख ससन डर तक यारख आदमी के कटलिस से खूब छपकी से भाई बड़ा कटाई काटी से ये भैल हैगा फ्लोरस स्वकंस्त्रात में झगड़वा भैल है नहीं खतिन यार के एगो लौंडा जाए के एक बड़ी कटाई काटी से झगड़ा में कटलिस निकारी से मन खिलवाड़ ना करे श्री नाम देश में भैया कटली से घास उस काटे की सब मनाई हुआ काटे के शुरू कर दे इसे एक बारे में सिपाही पकड़ कर के ली गए हैं। अब देखो का हुए है और का ना हुए एक बारे में हमारी जनता आप लोग की ओर हम जा रहे हैं उलर्स की ओर उलर्स के ओर हम जाएगा जोन फिर यहाँ पे के अंदर फोरसेटर वार नीमस फोरसेटर है दोस्तों। और फिर यहाँ पे फोरसेटर ग्लेन उलर्स बोले हैं तू जाने हैं हूँ आप सबन के फर किसी हुई कि पार्स फोरसेटर के हुई तो इस समय पे फिर यहाँ पे फोरसेटर हैगा ग्लेन उलर्स स्लोइ नित ऐ दत है ना है पेर्स पार्टी कांग्रेस जोन मई में होगा 2027 में अप न्यू फोरसेटर फॉर द पार्टी वर्ड इन इंटरव्यू स्टैंड फास्ट रेडियो पे बोली सेगा कि बोले कि वो होएगा उलझ बना दरकत दसे है देखो फोर्सेट स्काफ खीन इंटरन
De interne functie is hij naam na het overlijden van Janssen, zo kreeg de voorzitterschap. Orbele Oeders ligt de prioriteit momenteel bij de voorbereiding van het congres. Op Kehoi Kenahoi, een verkiezing met Kejitiga, Oeder Matura Mange, Oeder Kabole, Janneke Gayadine Mange, Oeder Bhaiya Sharman Mange, Ieder Oeders Mange. Over zijn eigen toekomst houdt Oeders de mogelijkheid open. Oelers waarschuwt tegelijkertijd voor een vroegtijdige interne verkiezingsstrijd. Volgens hem kunnen de vroege kandidaturen leiden tot verdeeldheid binnen de partij. Hij pleit ervoor dat de potentiële kandidaten zich eerst door hun inzet en werkzaamheden binnen de VHP profileren. Mensen, beleidsvisie John Maika strategie van richting 2030. तो जनता इफे या पे के बारे में आप लोग को हम थोड़ा से बता दिली हम जाए थे बैतलांग मिनिस्टर चेकिया के अंदर फिर दूर इंटरव्यू अने मेट फॉर मोम द एक्टिविस्ट ते को जाने कि चेकिया के जो मिनिस्टर फन बैतलांग द साख के ओके सब अन अंदर फिर करी से भैया ओम दत्त वेगे इंटरव्यू करे रहा बोले हैगा ओम स्टैंड के मेडे अन नेप इंटरव्यू रहा बोले गो एक्टिव अन एगो एक्टिविटीज रहा ग्रुप डेल द बेलन वार ऑफ द सीन इज कि मिनिस्टर माकिंग का टेकन ओवर अन मान सीट दी अन बीफा मिच एन सोनब्रिल ड्राग इंटरव्यू वाज एन एक्शन और बोलेगा दिस एक प्रेजेंटेड अस अ ग्रुप ऑंडरसुक्शनलिस्टन बोले द एक्टिविस्टन स्टेलन दैट द मिनिस्टर लक्स omging met de veiligheidsvoorschriften en zijn enige leefwacht wegstuurde zonder de ruimte te laten controleren. Daar zouden nepwapens explosief verstopt zijn geweest. Ik check je ke baantje thuwe hamare janta Nederland verplaatst 10 miljard dollar aan goud uit de Amerika. Maar kahe ke janta 10 miljard dollar uit de VS. Maar kahe ke hier likel in Nederland miljarden dollar ke sona Amerika, Canada me sab aur koninkrijk. Canada aur Amerika me dhalle ra ab sab mange jaye. Verenigde Koninkrijk met dhare Engeland mee. Maar ki kahe khatin? Kahe mange dhare Nederland ke besittingen 83,7 miljard dollar ke sona in binnen- en buitenland ke reserves udhari se. Centrale bank joon hega Nederland ke budhwar ke bole verhuiswe sab chijoon bole ernstige crisis ba. Hoewel DNB niet specificeerde welke crisis er zouden kunnen zijn, voert Amerika momenteel een felle handelsoorlog met Canada. Is het verwikkeld in een oorlog met Iran en heeft de recent militaire operatie geleid in Venezuela en rond Cuba. तो यहाँ बतावे कनाडा से और अमेरिका से एगो बड़का प्रॉब्लम है और वही मारे सुनवाई घसकावे जैसे बतावे है द नॉट सेंड जो स्पान

तो भेजैली है और बोले क्या क्या नहीं आते हैं, तो आपको हम ये गीत को बस सुना ही दिया है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। देखा जाए भैया, न्यू पॉलिसी पोस्ट एगो आयल है सूरीनाम देश में, और ये है उइटगांग सेंट्रम परमारिबो मुस्नेलर ऑप्ट्रेडन मेट इंसिडेंटन मोगलिक ते माकन, और एगो कंटेनर ने से बन बनाई के सबन धरी से ये बातचीत हो रहा है। और परमारिबो में ये बातचीत हो रहा है। हमारे जनता Volks, volgens het Korps Politie is het vestiging van hulppost besloten vanwege drukte en toenemende activiteiten. Ke bare mein hai, yani paramari mein bhaiya tu jaane hai kitna chor chohari hai, to tulon to jaano hai, to ohi ke karan yani ki extra police post aayi hai हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो अब देखो, कमा है चिजुआ कि चिजुआ ना कमा है मौसी, वही तो बतिया है, वही तो बतिया है। पुलिसी पोस्ट तो आयल है, आप देखो कमा है कि ना कमा है। तो लोग जानो चोर चहाड़ी शहर में कितना घूमे हैं। सोमेल रेगिस्ट्रात में आयल है गो पुलिसी सिखबार अनवेषक is en bij incidenten in het drukke uitgangsgebied sneller kan inbegrijpen. Or betaige hedelsto volgens het korps politie bolen noodzakelijk hega. Hoofdinspecteur Jere Sarwan Kumar Kasi, waarnemend hoofd van het kabinet van resortcommandant van Paramaribo, benadrukte dat de hulppost juist in deze omgeving is opgezet om politie dichter bij het publiek te brengen. Aujane somas deiske, hoe apet het ujane ketra derro, gume to bhaiya ka bole heiga, zwervers en zo. To ma ohi ke bichuwe me saban dhari gae ke ka bole heiga, ego extra politiepost. Na de toespraak werd de sleutel van een nieuwe post symbolisch overgedragen. Vervolgens knipte meneer het. Oude ik er waarin bolle parlement aanwezigheid in het uitgangscentrum moet de politie beter in staat zijn toezicht te houden bij de openbare minister. De abdeko ietsje joa kama he drugs ke waarin men teri aanplukke sunadi bhai. Drugs ke waarin men bolle te lukke kuch sunadi bhai.

जी हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग को बता देते हैं कि और आगे क्या क्या होता है वृक्ष के बारे में। विरोक्ष तालचस में दुर्लभ बौद्धम एच सिरिनाम ई कौन ची भैया सबन पाई से वृक्ष ऑन दैट इन विरोक्ष जो हम लोग विरोक्ष बारे ला भैया जो नदमी अपन घर में विरोक्ष बारे पूजा पाठ खात वो कर खातीन विरोक्ष तालचस में दुर्लभ बौद्धम एच सिरिनाम आयल। अब देखो कौन चकल से नीदरलैंड के दुआ ने पकड़ी से ऑन लाख वृक्ष आन खतरोफन दी बेद भी सुंदर मनीर वार फर्स्टॉप एगो विरोग खालचस में छोटा छोटा कुमकी है जो विरोग बरे है द खालचस ब्लीक एंड द सेंट फोर सी फन डबल बौदम वार इन द फर दो फन मिडल वार इन फर बरखन दुई दुई बौदम रहा हमार भैया विरोग में दुआ ने मांगते द फोंस ब्लीक बकेन फिया फेसबुक और बोले फोटो फन ऑन द स्केप्ट खुदरन देसे विरोग ओवर खालचस ब्रachten je heel en brachten je wel heel snel en hogere sferen. अब देखो यहाँ बतावे हैं नीदरलैंड के दुआने कहाँ कहाँ पावे भैया वृक्ष फ्लैशेस डेट में पावे हैं ब्लांद्रे में पावे हैं कुकुही में पावे हैं कड़ाबू में पावे हैं पालम दारू में पावे हैं झुरमचरी में पावे हैं फ्रुख्त में पावे है ढोलक में पावे इंस्ट्रूमेंट में पावे है कैशबरोद में पावे है सिर खुद में भैया जो नुआ पे आम उम सिर में धरन ओमा पावे है नरियर में पावे भैया पिंडा सांबल में पावे है पॉपकॉर्न में पावे है झूर मछरी में पावे जो सब सुरीनाम से आवे है बड़ा शर्म लगे भाई बतावत बाकी नीदरलैंड से पुलिस ई सब चीज में पावे है। अब जो नदमी मांगी भैया सच्चे के बनरियर पिए पिंडा सांबल खाए सब देखिए फरबूद हो जाए हम लोग कौन ची मिलावे द आन खतरो फरदोफन मिडलन से दो नीदरलैंड से ऑथोरिटेट इन बसलाग गनोमन इन मिडल्स फरनीतग और बोले ईर्दर ऑनर्स गेस्केप्ट नीदरलैंड से दुआन ओक al drugs verstop तो ये बड़ा अफसोस के बात है कि हमारे देश में देखो भाई सुरीनाम से पैसा कमाई खात कौन ची ना एक सब करे तो लोग जैसे जानो है हम लोग के नीदरलैंड में फियोत है ऐसे सुरीनाम में ग्लात है दोस्तों ऑंडरसुक बस्कुलकिंग बाय टास लैंडफेल वक्त रिजल्ट नाफ एगो लैंडफेल हैगा भैया वो बतावे हैगा राफा मिनिस्टर के वेंडी याप आयु डायरेक्टर बा टेलीकम्युनिकेशन के अन ऑथोरिटी सुरीनाम के बोले टास बोले ते schorsen niet heeft gehonoreerd moeten zowel de directie als raad van commissaris volgens minister Raymond Landveld van Transport bolle hege communicatie en toerisme hun werkzaamheden voortzetten. Op bolle Japayu verman met de beschuldiging vanuit de RVM ook een eigen rechtszaak heeft aangespannen tegen de leden van de raad van commissaris. Bolle de uitkomst daarvan moet volgens hem worden afgewaagd. Dan wil ik glad onderzoek krijgen om zeggen of die beschuldiging op waarheid berusten. Of wil ik glad onderzoek heeft RVM, RVC, Raad van Commissarissen. Wil ik landveld mogelijk een accountant die daarbij is in te zetten voor onderzoek. Dan wil ik een accountant die jij kan houden. Landverwijs onder meer. Op wet elektronische communicatie die al geruime tijd bij de Surinaamse Nationale Assemblée ligt en momenteel wordt bestudeerd om na te gaan waar verbetering nodig is. To je maakt het glad ke bare mein bhaiya. Dekho Leo Brunswijk, Kabole Brunswijk ke bhai bhaiya. In feite moeten we stroom van DNA afsluiten. Hoe hebben we ja? Bolle, hem lukken jij DNA ke bolle in feite stroom wat ban kerdek omdat onze paisa na baris he. Nationale Assemblée ke bolle he. Hoewel, bolle EBS nog moeten betalen. DNA ke chahenge bharre ke. Hem bolle na bharre he. Voordat de gekke dingen uitspreken, Leo Brunswijk. Algemene directeur he. EBS keer. Abole hega. EBS flink besproken in DNA.
बोले हम लोग एक बंद कर देवे के Brunswick bole de name bole ze hebben zoveel gebouwen en airco's laten ze aantonen wanneer ze voor de laatste keer hun betaling hebben gedaan merkte Brunswick op bole itra airco hua chale hai chirak itra bhare bole batawe kab sab laatste paisa hum log ke bhari se volgens de EBS topman is het probleem van het tekort aan stroom niet een probleem van vandaag Parisiense paisana bhare hai toekomst uitblijft op het probleem op te lossen moeten we meer stroom opwekken vanwege de drukte lukt dat niet via het stuurmeer bullet 2024 hebben aangegeven dat het geïnvesteerd moet worden maar er gebeurt niets mensen op bolle hega ja Brunswick bolle hega investeren uit het probleem te komen $500 miljoen maar dat geld is niet in één keer nodig. तो ये बात है चिनुआ के कैसल भैल है मौसी चिनुआ के कैसल भैल है इंदिरा गांधी वैक में दुई चिनुआ भैया विंकल इस अनविंकल दीप कैसल चिरवन दुई गो चोर के अपन दुकान में पकड़ के बंद करी से द विंकल दीप werd bij een supermarkt belacht en vervolgens meegenomen naar een adres aan de Magenta-kanaal. Al daar zou men het gestolen geld gaan ophalen. De politie kon de twee Chinezen aanhouden. To kitra en mijn social media bolle chinoen mooi kam karise, chor ke pakarise, maar chinoen apresko toemange kelebhai, dat gaat niet gebeuren. En dan hebben de politie de twee Chinezen aangehouden, want die hebben de Magenta-kanaal mee. Bolle hamlo jayla paiswa lawe. अब देखो एक औरत भैया मिंदर यारख किंद्रन ऑफ स्ट्रात और में सांदल भाई लेगो औरत फॉर मिंदर यारख किंद्रन ओका छोटी छोटी लड़कन ओकर साथ है और ओके सबन में सांदल के इस एगो आदमी सोंदा के रविवार के बात है तम फन आदम सोन स्ट्रात में निकेरी के बातचीत है बोले ड्रामा फॉन प्लास इन बेसिन फन टू मिंदर यारख किंद्रन बोले यो लड़कन चिल्लात भाई डर के मारे लड़कन भगल है गैले हेल्प खोजे और रतिया बिचारी गिरल परल फील ऑफ गेवर मोमेंट ऑफ द ग्राउंड और अदमिया ओके चमोटी से खूब मारी से भैया गिरल औरत के बमोनस फिंडन हेड फ्रेम दैट द मैन टॉक ऑफ द डग फन फंडा नीट इज आनगोहोदर डू द पुलिसी फन निकेरी uit informatie blijkt dat de vrouw wel aangifte had gedaan van de mishandeling, maar deze gisteren weer heeft ingetrokken. De man kon niet worden opgespoord omdat hij zich vermoedelijk ergens schuilhoudt. De politie zal zeer waarschijnlijk Nalis Calera, Bakiu Pino aangifte terug lezen van ja, 10,000 Ademi Maral he. Embola se Congo menani. Embola se Maral he. Congo me Maral he. सोचो भैया सोचो कितना आदमी मरल है कोंगो में नानी और एम्बोला एक बीमारी है जो वहां पर है तो ये बात है तो एम्बोला से 3,000 आदमी मरल है हमारे जनता और बताए गए है geen vaccin of geneesmiddel Ebola is een ziekte die vooral Afrika में आवे है dat wordt overgedragen via een fysiek contact tussen mensen of via lichaamsvloeistoffen er wordt een zeer besmettelijke koorts gespoord mensen dat is het आप लोग को हम सोची एक गीत को सुनाई तो फिर हम वापस आएंगे आपके पास

तो ये है क्रिसवन छेदी के आवाज में आप लोग को हम इस गीत को भी सुना दिया है। हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों,

दोस्तों एक फरदख्त सुरीनाम ही में हमी है, तो वहां एक फरदख्त इस आनखौदे फॉर डिफ्स्टल आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में है। 25 तारीख भैया एक आदमी टेलीफोन लेके जाए आईफोन 13 प्रो मैक्स चोरी करके भागे न्यूयॉर्क फॉल वेक में। 2 तारीख सितंबर की सिपाहियों के हीरा वेक में पकड़ लिए भैया, सोना के रास्ता का नाम है हीरा वेक, वहां पे दौराई के जाए के सिपाहियों के पकड़ी से। तो ये तो बहुत ठीक बात है भैया, मन में खुद फॉर वार्निंग ऑफ कसैत। एक आदमी भैया ओके समझ दागे रहा, अब देखो डायरेक्टर जो है देहालत के आनी सादी ऐस नाम सैफरे खवीजन डायरेक्टर फीका ई के बोले हैं, फीका ई जो पार्लियामेंटेरियंस है एनडीपी के नेचुरल असेंबली में बोले हैगा, जो फेस क्यूरिंग्स इंस्टीट्यूट है यूलियत वोंगसोरे जो मलाइनी है बोले ओके चाहिए ओकर नाम सेफर करे के बोले फोकस हर ब्लैक आइटन ऑन अ फंकलिक अंडरसुक दैट देयर गेन स्प्राक इज गवेज फॉर फाइनेंशियल फ्रॉडलेस हैंडलिंगन टरवेल द फॉर्मलिक डायरेक्टर ईर्दर डोर द हुइडिक रार फॉर कमिसारस मे देयर खलेक बस्कुलखन जो जैन ख कॉन्फ्रेंटिर। ते इस सब आदमी के बचावे भैया कि देश जाई के हुआ सुधारे हैं, ये बड़ी दुख के बात है हमारे देश में। एगो हील खसेन के सिपाही पकड़ी से दबूर बैठे में नानी, खसेन वहां भर के पलवार वहां भर के पकड़ी से आन होल्डिंग फोन इन फ्राइडे 28 अगस्त 2026 प्लांट्स पुलिसी लॉस वार्स की वंश को तो भैया तब पलवार भर के जाए के सिपाही और पकड़ पाई से। तो ये सब बात भी हो भैया और बताए गए हैगा। SLN stop seizoen vluchten naar Barbados per 30 september. Barbados pe jon SLM ude bhaiya 30 september se vluchten ban ho jayi Paramaribo Georgetown Barbados mein bole hega vacant ho jayega Suriname Airways volg aanpassing naar evaluatie van de geplande seizoenoperatie en maakt deel uit van een voortdurende netwerk. Over de luchtvaartmaatschappij laat meten Georgetown in Guyana te blijven bedienen. और भैया ये सब बात है सूरीनाम देश के जो आपको हम बताते हैं। हमारा समाचार धीरे धीरे खत्म आने के हुआ, एक दो समाचार और सुनाएंगे। टीम सूरीनाम क्लार फोर साउथ अमेरिकन स्पेलर इन अर्जेंटीना, अमेरिकन स्पेलर जो बा ऑडिजन 12 तारीख तो में 26 सितंबर 2026 में अर्जेंटीना में साथ साथ रामशरण वेटवेजिंग नोडक मिलिटेर ओवर यूनिट फरखुदन मिलिटेर लोग के फरखुदिंग चाहे पावे के और बतावे मेयर दान 1700 सिकन हैगा दोर खरातस कोल माल तेदेन इंडोनेशिया इंडोनेशियम जो सो सो आदमी खाई बांटत रहा 1700 आदमी हुआ बीमार है नानी। अब पता ना है इंडोनेशिया में कौन खाई ऐसे धर दी से वो है मेदन याफा में बेंचरी नाम है इफकेनस खनुमन अने खनुख मार मिस मूत अंबस्तियर स्कल्टियर द फरांद्रिंग। तो बहुत बहुत समाचार है जो आप लोग को मियाँ दिखाई दिए हैं कि कैसे कैसे तोरिया है रेक्टर्स अमेरिका के वेकर चुरीलत फरवेद्र इंदसाक लिंसली क्लेंसी के बारे में तो एक बारे में बता रही। और तिबित में भैया जो ओवर स्ट्रोमिंग भैल हैगा नेपाल में खस्ती खनात एनन देर तक भैया एनन देर तक और आदमी आयल ओक वर्दन ऑफ 531 मेंशन फरमेस तिबित चीनवा के देश में बा चीनीज मीडिया माकते एर्दर नोग मेल्डिंग फॉर 21 ओमगेकोपन स्लाक्टोफर 1300 आदमी जो मर गए है हजारन पर्सन वर्दन फॉर मिस हमारे जनता। तो ये सब बात है चीनवा देश के और श्रीलंका के कि उतना आदमी हुआ पे और मरल भैया ब्रसल ट्रैक नोग 500,000 यूरो आउट फॉर हेल्प फॉर नेपाल 500,000 यूरो ब्रसल अब पठाएगा का बोले हैगा नेपाल में हुआ हेल्प करे के और जो उतना स्लख तो फोर्स हुआ भैले उतना आदमी हुआ मरल हैगा। हुतुस रखेरेंग रूपन तक तक
ruim 80 doden bij gevechten tussen Hutu en regerings. Toen in Afrika met Gujaga Hutu he, Uego volk he, regeringleider Sigirilia Isef he, Alladise, Otra Admi, Maral Hega. Ja, wat hebben we Denemarken, Kabul hebben we 2027 naar terugkeercentrum buiten Europa. Jane en miljoen door awe migranten, wat hebben we verwachten in 2027 mee klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een zogenaamd terugkeercentrum buiten de Europese Unie. We hebben grote vooruitgang geboekt met de oprichting van een terugkeercentrum buiten de EU en zijn nu dichtbij dan ooit tevoren, zei minister van Immigratie en Integratie. Bolle in de verklaring vanuit Denemarken verwachten we eind volgende jaar klaar te zijn om de eerste buitenlanders naar de partnerland te sturen. Op willen 4 andere landen waaronder in Nederland hebben soortgelijke plannen ontmoet zijn ambtenaren, ambtgenoten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen. Kijk er maar mee. Samen jaiga batiai bhaiya aise batiya hai hamare nani. To jaise jaise rahega aap log ko hum बस अपना समाचार बताते ही रहेंगे।

0: सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuin.
1: Aaj bhi kuch shair aur shairi lekar humne aagi hai aur kehte hai pyar ki प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम है आज हमार। फिर भी कि कैसे है ना पूछो दिल की हकीकत, मगर ये कहते हैं ना कहो ना पूछो दिल के हकीकत, मगर ये कहता है कि वो भी बेकरार है जिसने बेकरारी किया है। हमारे यारो हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

और तेरे प्यार में क्या क्या होता है, अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है, ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहां चलते हैं एक रीमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं हमारे दोस्तों। और ये रीमेक सॉन्ग क्या है और तुम तो जानते हैं स्वीट मेलोडी का सॉन्ग है मोहन के मुरलिया। तो मोहन के मुरलिया तो बजते हैं भैया और जब बजते हैं तो आपको हम कहते हैं गुनगुनाते रहो और गुनगुनाने के बाद झूमते रहो यानी कि इस सॉन्ग पर।

और अलामंग सुकु सुकु और कोंची सुकु सुकु भैया प्यार के सुकु सुकु के बांचित हो रहा है हमारे सुनने वालों। एक बार फिर करते हैं, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आपके प्रोग्राम बनाना है आपके लिए हमारा काम, यही है हमारा प्यार का पैगाम। तो उसके बाद हम चलते हैं कि मेहनी लगा के रखना।

लगी है तेरी हाथ उरु मेहनी कब लगते है जब शादी होता है ते। तो धर्मेंद्र सिंह ने आपको इस गीत को गाकर सुनाए हैं दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं। और आजकल भी बहुत यूपी पोपी है, और वो कौन सा गाना है? शेकिंग बेबी शेकिंग।

0: है कैसा है ये दीवाना दोस्तों रिमिक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं और हम आगे के बढ़ते हैं। जब ये लड़का दीवाना होता है तो पर्दा में क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है दोस्तों, आओ चला जाए इस सॉन्ग को हम सब प्यार से रेडियो के माध्यम से सुना जाए। ओनली रीमिक्स और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है आशा भोसले के साथ में।
1: ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।

और दोस्तों आज हम आप लोग को एक और सुनाते हैं और बॉलीवुड ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग हम आपको फिर सुनाते हैं।

और दोस्तों ब्लाइव में प्रोग्राम लाइस्ट्री ओनली झूमो नाचो गुनगुनाओ रिमिक्स ओल्ड इन गोल्ड। जितने लोग को ओरिजिनल पसंद है वो भी हम जरूर चलाते हैं, लेकिन कितने लोग के रिमिक्स सॉन्ग भी और यानी के पसंद है। तो आज आप लोग को हम ओल्ड इन गोल्ड रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे। तो रिमिक्स सॉन्ग के मूड में है तो अब क्या है सुना जाए, किशोर जी आपको क्या सुनाते हैं। किशोर कुमार निखंती तख्त का हिंदी सॉन्ग रीमिक्स हम आप लोग को सुनाएंगे। किशोर कुमार का आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

आई और आ भी आ जाना। और फूल की शहर में एक घर अपना है दोस्तों, उसके बाद हम भिन चलते ही आओ सुना जाए क्या लेकर हम आपके लिए आए हैं हमारे लवर्स के लिए।

और क्या हुआ तेरा वादा भी लेकर हम आप लोग को आएंगे, लेकिन क्या हुआ वादा से पहले जॉनी आपको और कुछ सुनाना चाहते हैं और आपको हमें यही आशा उम्मीद है। एक बैंड खून जेकर मैन से दर्ज ली ओक जो फिल खनी थे वात वात ऑफ दैट मोमेंट, जैसे हम यहाँ पे कूद कूद के और नाच नाच के खनिट करील मैन से एन येली उगदार है एन आल्सो दैट इज नाउ खनिट एर वन।

और ओ जब हम भी जवां होगे तुम भी जवां होगे तो पता नहीं चलेगा कि आप आम्स्टरडम में होगा या सूरीनाम में होगा। जब बचपन के प्यार जगते हैं और दोनों सोचते हैं जब हम दोनों जवां होगे तब मालूम नहीं कि हम कहां होगे, कोई रोटरडम में होगे, कोई आम्स्टरडम में, लेकिन कोई भी सूरीनाम भी हो सकता है दोस्तों। और हमारा एंड कहाँ होगा दोस्तों इसको भी किसी को पता नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा सॉन्ग से आप लोग को आज सेवा फिर से करते हैं।

क्या क्या आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। अब झूमो नाचो गाओ गुनगुनाओ जो भी चाहे और करो। देसली चिस्का ये अलेन बे रेडियो फाहुन और बे अलेन बे रेडियो फाहुन खनीते बेस्ट लाइफ स्टार्स। इसके बाद और आगे हम चलते हैं।

शांति। तो दोस्तों हमारे उम्र के लोगों और दिल ना लगाना हमारे यारो, प्यार करना जरूर करना। तो हम चलते हैं एक आउट जोन की ओर, वो क्या है?

0: जाना है
1: और मुझे भी चलते जाना है। और दोस्तों नौका लास्ट नंबर
0: कबूतर
1: और कबूतर जा के मतलब ना है कि हम चला जाएगा। अभी इसके बाद इस सॉन्ग के बाद में हम रेक्लाम चलाएंगे और रेक्लाम के बाद में दखान द लाइन ऑफ मेन से दमोख यली खान बेले ऑफ रेडियो फोन ऑफ टेलीफोन नंबर 073-622-0777 मोगे यली खान बेले ओम नंबर ऑन द व्राग मदर डू यली पास ना द रेक्लाम। पहले इस गाना को इस गीत को हम सुना जाए।

और तेरे प्यार में क्या क्या होता है, अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है, ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

मोहब्बत इनायत कर्म देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं प्यार भरी गीतों की और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते हैं और आगे को तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो कि काश उसे चाहने के अरमान ना होता काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नौकीर वसमोए काश उसने चाहने का अरमान ना होता काश उसे चाहने का अरमान ना होता मैं होश में रहती हुए अनजान ना होता ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। तो हम चलते हैं मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन और फिल्म के नाम है सलामी अलकायग्निक कुमार शानू।

तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

ओ सनम और ओ सनम दोस्तों, और ओ सनम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है, और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं, और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, तेरा नाम धोखा रख दू नाराज हो गए है क्या। अरिजीत सिंह की ओर है।

0: इश्क थी मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: और तेरा नाम धोखा रख दूं और तुम नाराज हो गया है क्या? कि कहते हैं हमने ना मोहब्बत मिली, हमें ना मोहब्बत मिली, और हमें ना मोहब्बत मिली ना प्यार मिला, हमको जो भी मिला बेवफा यार मिला। अपने तो बन गई तमाशा जिंदगी, हर कोई मकसद का तलगार मिला। कि कहते हैं दोस्तों प्यार में धोखा होता है, तूने ही लगा दिया इल्जाम इस बेवफाई, अदालत भी तेरे ही, गवाह भी तू ही थी। तो हमारे यारो, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, और ये गीत है प्यार का दोस्तों, प्यार का सॉन्ग है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला।
2: जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करेगी?
3: हाँ।
2: प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस।
2: तो फिर मैं अभी आया।
3: ओफो, ये फिर कहाँ चला गया?
2: तो फिर साइन कर इस पे।

0: क्या कर रही हो तुम?
1: हाँ याद है ना,
0: तुमने प्रॉमिस किया था।
2: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

और बिदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यांगनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

और दोस्तों जैसे बताएंगे आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

फनफन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनफन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फन हिंदुस्तानी रेडियो।

की और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: ओ मेरे दिल की चैन ओ सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहां कहां सुना कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं

और आपको भी कुछ हुआ है नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जो है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जो है।

मेराम ने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है काला बाजार। के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है कुर्बानी, ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

ऐसे कि कैसे, ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

आते ही एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपरहिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग, फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो, और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है, अनहिट सुपर हिट फिल्म।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी।

आपको करीब एक घंटा कुछ हिट सॉन्ग सुनाएंगे, और वो कौन सा सॉन्ग होगा? कुछ मोहम्मद रफी का, परमा श्री मोहम्मद रफी का हॉट सॉन्ग, और कुछ माइथी मुकेश का सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे। आओ बढ़ा जाए, सबसे पहला सॉन्ग की ओर हम चलते हैं, और वो है माइथी मुकेश का, ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है पूरब और पश्चिम।

कोई जब हमारा कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। और ये फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम, जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है। कितने लोग इस फिल्म को देखकर बहुत प्रसन्न किया है। और फिल्म पूरब और पश्चिम में जिसने माइती मुकेश ने काम किया है दोस्तों। और अगला गीत की ओर हम जाते हैं, वो है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है प्यार का सागर, जिसमें मीना कुमारी राजेंद्र कुमार ने काम किया है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन है, आओ सुना जाए।

और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन हैं आपको तो पता है। आज कुछ पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाना और नाइंटी मुकेश के गीत से आपको हम सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपको पता है हम चलते हैं फिर से एक फिल्म के नाम है मिलन, जिसमें नाइंटी मुकेश ने इस सॉन्ग को गाया है नी खतिर का। ये गीत है मैं तो दीवाना दीवाना और दीवाना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और ये सॉन्ग है।

और आपको आज हम दोस्तों पद्माश्री मोहम्मद रफी का गीत और यानी कि मायती मुकेश का गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे। तो एक मायती मुकेश का, तो अब हम जाते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी का और मूवी का नाम है घराना निहत हो का गीत है, जिसमें पद्माश्री मोहम्मद रफी आशा जी ने और इस गीत को बहुत खूबी से गाया है। इस एन हिट सॉन्ग जिसमें राजेंद्र कुमार आशा परीख ने काम किया है, आओ सुना जाए।

जब से तुम्हें हमने देखा है, अगर ये आपको हमने जब से देखा है तो सिर्फ आंखों में कौन है, तुम ही तुम हो। तो दोस्तों आगे तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम तरुण जाते हैं ओल्ड इन गोल्ड जोंग, और है माइटी मुकेश ए नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये जोंग है, फिल्म के नाम है हम तो तेरे आशिक है, हम तो तेरे आशिक है, और देखो क्या गाया है।

Our movie can name hit those two first 1967 gig. बन मा यानी कि माइंटी मुकेश और नैति गिल लता जी का सॉन्ग है हम तो तेरे आशिक है सॉन्ग का नाम है दोस्तों।

आप जानते हैं आज हम आपको खुशी करेंगे और वो है डल मेंसिडी फान लिटर फान माइती मुकेश एंड मोहम्मद रफी परमा श्री मोहम्मद रफी को गीत को पसंद करते हैं आप सबके लिए आज आपको हम मौका देते हैं कि ये दोनों को गीत आप सुनिए तो हम चलते हैं अब बारी है अब की बारी है परमा श्री मोहम्मद रफी और आशा जी भी साथ में है मूवी का नाम है कश्मीर की कली।

आओ तुझे देख के और दीवाना हुआ बादल। परमा श्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का ये गीत है, मूवी के नाम है कश्मीरी, कश्मीर की कली। दोस्तों जिसमें शमी कपूर और शर्मिला टैगोर ने काम किया है हमारे दोस्तों। उसके बाद तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो भी है, वो है मधु मुकेश का, ये सॉन्ग है और इस फिल्म में मनोज कुमार ने काम किया है। फिल्म के नाम है हिमालय, हिमालय की गोद में, हिमालय की गोद में माला सिन्हा और मनोज कुमार ने काम किया है। मैकी मुकेश का एक टॉप सॉन्ग यहां से हम चलाते हैं।

और मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर रहे। ख्वाब से कहाँ प्यार करते हैं लोग, ख्वाब में रोक सिर्फ ख्वाबों में गुम रहते हैं। तो मुकेश की बात में और हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी की और हम जाते हैं दोस्तों। और आशा जी इस गीत में काम किया, ओल्ड इज गोल्ड क्लासिक सॉन्ग। और ये मेरे हाथ में तेरे हाथ, जिस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने काम किया है दोस्तों, मूवी के नाम है कश्मीर की कली।

मोहम्मद रफी जी, परमा श्री मोहम्मद रफी जी और आशा जी क्या करते हैं। वाह वाह वाह, तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं और वो गीत तो होगा मैथिली मुकेश का, ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत जो है ये फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता निगेटिविन शस्त्र का। ये सॉन्ग जो है एक सुपर हिट सॉन्ग है मुकेश का, मैथिली मुकेश और नाइटिंगेल लता का ये गाया।

एक नहीं ढूंढे ना मिला, तारो गिना एक नहीं मिला। और क्या क्या क्या माइती मुकेश और यानी कि लता जी, नैतिक लता जी आपकी सुनाई हैं हमारे दोस्तों। तो हम आपको सुनाते हैं, फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। निक रोंड सस्ता का फिल्म है जिसमें मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है और यहाँ पे बताए गए हैं मैथी मुकेश एंड नैतिक लता मंगेशकर का सॉन्ग है।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। हिट सुपर सॉन्ग फॉर नहीं खती नहीं खनते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरे चुनरिया दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है दिल में कुछ मजलता है।

तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंत का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नहीं खत रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहू, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेगंतक का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और धड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मोफी का नाम है कोबरा गिल, मैं मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं। सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ दोस्तों, एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर।

0: और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नई खतक का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं।
1: आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम पेश करते हैं ये प्यारा गीत, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

फिल्म मधुमेहता मधुमती में से निकाले हैं। ये शानदार गीत मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं लता जी के साथ, ये प्यारा द्वैत और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ? जी बस दिल थाम के बैठिए और ये गीत से लुत्फ़ उठाइए, इस तरह से आ रहा है।

तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे ही नाम से ख़त्म। लता जी और मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह मिलके आपको सुनाए हैं उत्तम जगदीश के लिखी, जी नहीं, उत्तम जगदीश का म्यूजिक है और हमने निकाले फिल्म वारिस से। प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हम सुनाए ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार जी। हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको क्या रहा है, सुना रहा है आरडी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर।

एवरग्रीन किशोर कुमार सत्य पे सत्ता में से निकाले हैं और हमने पेश की ओपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आरदी बर्मन के साज पर, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो लीजिए, अगर जब आप कार्यक्रम बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से सुन रहे होंगे तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

खूबसूरत तेरा चेहरा, नरगिसी है आंखें, वाह क्या बात है। आओ की तारीफ ही तारीफ, सर से पांव तक सिर्फ तारीफ ही तारीफ। इसे सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, फिल्म रूही में से निकाल कर सुरेश वादिकर की आवाज़ में पेश हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में फिल्म ब्लैकमेल की तरफ। नेकेट इंद्रियन सैफ तक 1973 का ये गीत ब्लैकमेल का। जानी पहचानी गीत है।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत ब्लैकमेल में से निकाल कर निहत इंद्रिय से इवंत का ये गीत। आपको एक बात भी बता दूँ, जिस समय ये फिल्म बना ब्लैकमेल और कल्याण जी आनंद जी के साज इसमें हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार ने गाए और धर्मेंद्र जी को इस पर एक्ट करना था, वही इसका स्टार कास्ट था। तो धर्मेंद्र थोड़ा दुविधा में था, वो डर रहा था कि किशोर कुमार जी का गीत शायद मुझ पर न जचे, क्योंकि वो ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ में एक्ट करता था। तो यही थोड़ा सोचते, लेकिन लोगों ने कहा फिर भी आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है गीत, तो आपको एक्टिंग तो करना पड़ेगा। तो बहुत सोचे समझे फिर भी धर्मेंद्र ने किशोर कुमार जी के ये गीत पर एक्ट किए। आप नहीं मानोगे, ये फिल्म ब्लैकमेल बहुत पॉपुलर हुआ और ख़ास करके किशोर कुमार जी का ये गीत बहुत पॉपुलर, बहुत विख्यात हुआ भारत में, भारत के बाहर भी। और आज तक लोग इसे ये गीत को बहुत पसंद करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग इसे अवश्य पसंद करते रहेंगे। ब्लैकमेल में से हमने निकाले, तो चलिए ब्लैकमेल के बाद बढ़ते हैं, जी हाँ, असली नकली के ओर। असली नकली के ये गीत आप सुनिए।

फिल्म असली नकली से हमने निकाले ये गीत और पेश किए शुभकामना के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, आप सुन सकते थे। तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी का ये शानदार गीत। चलो सुनते हैं इस तरह से।

किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये टाइटल सॉन्ग था फिल्म ये वादा रहा का निगतिन तुई तख्त का ये गीत। तो लीजिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है क्या ख्याल है। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार, किशोर कुमार जी के बाद एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर है।

दिल भर मेरे कब तक सताओगे, जी हाँ एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर ये गीत। चलो देखते हैं हमने प्लेयर में ये गीत रखे हैं, जी हाँ नहीं बताऊंगा, बस सुन लीजिएगा।

खाते हैं हम कसम, तुमको ही चाहेंगे, गफलत में मत पड़िए। ये कुमार सानू नहीं था, जी नहीं, ये बाबुल सुप्रियो था जो आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाहून हिंदुस्तानी। www.faahoonfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर आप सुन रहे फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं। देवानंद का ये फिल्म है, जी हाँ, देवानंद का फिल्म है, क्या ख्याल है।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जी हाँ रफ़ी साहब और गीता रॉय जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम आपको ये गीत और सुनाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी नहीं बताएंगे, लेकिन बस सुन लीजिएगा शंकर जयकिशन के साथ पर सिर्फ

तो झूमे ये धरती झूमे आसमान, बन की पंछी शंकर जय किशन के साज पर लता जी की आवाज में हमने पेश की। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।